FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 13, तदनुसार 3 जून ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as a contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls. Meanwhile, Congress has appointed senior Karnataka leader Siddaramaiah to its highest decision-making body, the Congress Working Committee CWC. The appointment is being seen as a significant organizational decision by the party leadership as it seeks to ensure stability and coordination within its Karnataka unit during a key political transition. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. To ensure local participation, MLAs have been invited to attend the localized events, and the Chief Minister's main program will be broadcast via video conferencing directly to all block and municipal headquarters. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected President of the 81st session of the UN General Assembly, UNGA. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's Special Envoy for Multilateralism, Andrias Kokoris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative Policymaking and Representative Organ of the United Nations will commence in September. In accordance with the established regional rotation, the president of the 81st session was to be elected from the Asia-Pacific group. UNGA President-elect Dr. Rahman said that he will uphold the world body's work on human rights and engage all member states during his tenure. External Affairs Minister S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UNGA President. In a social media post, Dr. Jaishankar said that he is looking forward to working closely with Dr. Rahman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground, Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership helped them with ease. And that is the end of this news bulletin.
4: FMK 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे भूपिंदर सिंह। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगी मौसम नियोगी। सुबह 7 बजे समय होगा कार्यक्रम जोहार चैबासा का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांग्ला गीत। कलाकार होंगी रूना लैला।

9 बजे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः आप सुन सकेंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 5:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 पर आकाशवाणी चयवासा से शेष कार्यक्रमों की विवरण दी जाएगी। 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही गायिका के गाए चंद फिल्मी नगमे।

5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अकड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। मनोरमा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज मध्यम वर्ग कल्याण विषय पर चर्चा होगी।

7:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं मौसमी नियोगी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी मौसमी नियोगी। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहार चेबासा के इस कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उजाला फिल्म से स्वर है मन्ना डे का।

कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं मेरे हमसफ़र फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और बलबीर की।

जोहार चयबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सर में आंधी फिल्म का ये गीत।

0: बरसों बाद मुकुट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका कि हम बले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलो रहे को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो घर आई नहीं हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
8: तुम लोग बुरा मिशन काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
9: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में उन्होंने ने बागिया तो कि दोनों सीआरपी को लो पुलिस को लो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ले तना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो गुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया नु तुम तेना मिल आप ले तना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: जोहार चयबासा कार्यक्रम में श्रोता भाई अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वर में बॉबी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में चंबल की कसम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गाना। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

जो हर चयबसा कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं, अमृत फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, जोहर चैबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चैबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल
0: सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
6: वेनेजुएला सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की

0: सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashvani News, Delhi.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thawar Chand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivkumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony as it is the place from where Shivkumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. More from our correspondent.
6: In the first phase, beneficiaries will start receiving rupees 3,000 directly into their bank accounts from today. It is initially estimated that nearly 2 crore women will benefit from this scheme. At Navarnu, the inauguration ceremony will take place at 12:30 p.m. attended by Minister Rugnimitra Paul of the Department of Women, Child Development and Social Welfare. The Chief Minister's program will be connected via video conference to every block and municipality in the state. Immediately after the inauguration, 100 selected Annapurna Yojana beneficiaries in each block and municipality will be handed approval letters. Similarly, 100 beneficiaries in the Kolkata Municipal Corporation area will also receive these letters. Beneficiaries have been given 90 days to register under this scheme. Women aged between 25 and 60 years will be eligible for this benefit. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Ministry of Tribal Affairs will organize the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi today. President Draupadi Murmu will address the inaugural session of the conclave. The event is being held as part of the ongoing Janjatiya Garima Utsav 2026. President Draupadi Murmu will virtually inaugurate the training fab established at the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru. She will also inaugurate 75 space labs established across

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएसपीएस के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और

0: समाचार विस्तार से। पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर की चयनित पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 42 पंचायतों का चयन किया गया है। झारखंड की झकरहाटी पूर्वी पंचायत का चयन महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला हितैषी पल के लिए किया गया है। पंचायत को सम्मान के साथ 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। ये उपलब्धि राज्य की पंचायतों के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुविधा के लिए नए दाल भात केंद्र खोलने तथा मॉडल दाल भात केंद्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में राशन कार्ड वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, पीवीटीजी, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति और खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने रांची स्थित रिम्स का दौरा किया। रिम्स की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिम्स का दौरा करने की अपील की।
1: कहीं देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खामियां का उजागर होते ही रहता है, तो इसको सुधार की जरूरत है। इसलिए इसको मुख्यमंत्री जी को कभी कभी समय मिलता है तो रिम्स है उसका व्यवस्था को देखने के लिए आना चाहिए। आज लोग हड़ताल में है, अगर स्वास्थ्य जैसे विभाग हड़ताल में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा।
0: रांची नगर निगम ने मॉनसून से पहले शहर में अतिक्रमण, अवैध जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हरमू नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से गाद निकालने का कार्य तेज करने तथा नदी की जलधारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।
2: जो नदी के किनारे है, अलग अलग तरीकों से उसका अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन दिखता है, बट उस पर जो गंदगी फेंकने के अलग अलग तरीकों से लोग अपना फेंक रहे हैं और वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज वो भी एक तरह का अतिक्रमण है या एक तरह का वो नदी का जो है डिस्टर्बेंस का आयाम है।
0: IIM रांची में आज से 2 दिवसीय टीचिंग विद केसेस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलिस एम एमंस शिक्षकों को केस आधारित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण देंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में केस आधारित और प्रतिभागी केंद्रित शिक्षण पद्धति को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से कक्षाओं में संवाद, चर्चा और व्यवहारिक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक सेवती साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सेवती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है।
1: सेवती साहू हूँ, मैं वार्ड नंबर 9 तेली साय सारीकला की निवासी हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस मिला है जिससे मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें धुओं से राहत दिला के आज उज्ज्वला गैस का उपयोग कर रहे हैं।
0: राजस्थान के दौसा जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने और उनकी सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से गढ़वा जिले की खरौंदी निवासी विशाल उपाध्याय और अलीगढ़ निवासी संतोष सिंह वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से प्रिंटिंग मशीनों के साथ 24,84,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक के दुकानदारों के साथ बैठक कर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क किनारे दुकान लगाने के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: मार्केट और ये मेन रोड के जितने भी दुकान के दुकानदार हैं और जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं उन सभी के साथ मीटिंग किया और सभी को समझाया गया है कि जो सड़क पे अपना सामान वो सड़क पे फैला के रख देते हैं और वहाँ उसकी वजह से जो जाम की समस्या होने लगती है, कि समझाया गया है कि आपके अपना घर समझ के इसको व्यवस्थित करें।
0: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। 4 और 5 जून को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जेएसएसपीएस के तैराकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के हटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के सार्थक ने बताई ओएसएम की 15 कमियां, चेयरमैन और सचिव हटाए गए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, एक्सएलआरआई निजी प्रबंधन संस्थान देश में दूसरे स्थान पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लचर एम्बुलेंस सेवा की शिकायतों पर सीएम नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झिकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएसपीएस के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयपासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक।

0: ho bondhu tin din, hoi hoi, ho bondhu tin din.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे माटी की महक कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्ला गीत। कलाकार थी रूना लैला। इसके साथ ही माटी की महक का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में हम हर दिन आपके साथ कुछ नई नई जानकारियाँ साझा करते हैं। इसी क्रम में आज हम जानेंगे विश्व साइकिल दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज यानी कि 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस साइकिल के महत्व, उसके स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, हम सभी साइकिल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक यातायात का एक साधन के रूप में भी जाना जाता है। श्रोताओं, साइकिल एक ऐसा साधन है जो सस्ता, सरल, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। आज जब दुनिया प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है, तब साइकिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना तथा सतत विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान को पहचान देना था। तब से दुनिया के अनेक देशों में यह दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। श्रोताओं, साइकिल मानव जीवन की सबसे उपयोगी खोजों में से एक है। यह न केवल परिवहन का साधन है बल्कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी है। साइकिल चलाने से शरीर के लगभग सभी अंग सक्रिय रहते हैं। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल आज भी लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन बना हुआ है। विद्यार्थी स्कूल जाने, किसान खेतों तक पहुंचने तथा मजदूर अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए आज भी साइकिल का उपयोग करते हैं। श्रोताओं, साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम भी माना जाता है। इसके अनेक फायदे हैं, जैसे कि यह शरीर को हमेशा स्वस्थ और फिट रखता है। साइकिल रोजाना चलाने से हृदय संबंधी खतरे को कम किया जा सकता है। और अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रोताओं, मानसिक तनाव और चिंता को भी साइकिल चलाकर कम किया जा सकता है। अगर आप रोजाना साइकिल चला रहे हैं तो शरीर की सहन शक्ति और ऊर्जा भी आपके शरीर में बढ़ जाती है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के जोखिम को भी आप साइकिल चलाकर कम कर सकते हैं। इस प्रकार साइकिल स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का एक सरल और प्रभावी साधन के रूप में भी माना जाता है। श्रोताओं, आज वायु प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो या कोई धुआं या हानिकारक गैस साइकिल से नहीं निकलती है। इसलिए साइकिल पर्यावरण को स्वच्छ

0: रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, यदि अधिक लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। साथ ही साथ हम आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे, क्योंकि अगर आप रोज़ाना ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल जलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक क्षति होती है। कम दूरी तय करने के लिए यदि हम दैनिक रूप से साइकिल का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं ये हमें आर्थिक बचत कराती है। श्रोताओं, विश्व साइकिल दिवस हमें साइकिल के महत्व और उसके लाभों की याद दिलाता है। साइकिल न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए साइकिल का उपयोग अति आवश्यक है। श्रोताओं, अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व साइकिल दिवस के बारे में।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलवार को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: ये तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुर मिनाया जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तोड़ के दोनों से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ले तना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो गुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम ते ना मिल आप ले तना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए अब सुन

0: सुनते हैं नशापान समाज की एक गंभीर समस्या विषय पर आधारित यह भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवशंकर हांसदा और उनसे बातें कर रहे हैं रमेश दास।
1: श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं नशापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम मिल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैवासा तथा कुपोषण उपचार केंद्र चैवासा के प्रभारी डॉक्टर शिवशंकर हांसदा जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जोहार।
2: जोहार आप।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा क्या है।
2: नशा एक्चुअली शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, लेकिन नशा एक्चुअली इसके बृहत रूप में देखा जाए तो ये तंबाकू को भी नशा है, चाय भी नशा है, और उसी के साथ हमारे जो अगल बगल या लोकल में जो मिलते हैं हमारे चावल से बने हुए या फिर पाम या ताड़ी जो बोलते हैं, ये सारे जो है उसके याद में आते हैं। जैसे अभी सुबह उठ के लोग जो पीते हैं चाय, वो भी एक तरह का नशा ही है। तो इस तरह से नशा के रूप में अगर नशा का वर्गीकरण किया जाए तो बहुत सारा से लोग हैं, तब तो जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, आप उसको नशा बोल सकते हैं।
1: अच्छा, ये नशे का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नशा एक्चुअली बोला जाए जैसे अभी चाय के लिए, तो चाय भी अगर आप पीते हैं तो इसको अगर आप समय से पीते हैं तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने लगेंगे, सुबह 12 बजे सब ये 4-5 बार पीते हैं, तो ये भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा। उसी तरह से अगर अल्कोहल की बात करिएगा तो ये कम मात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसका आप मात्रा अधिक लेते हैं तो ये हमारे जैसे किताबी तौर पर बोला गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो ये 15-20 साल के बाद जो है ना आपके लीवर को प्रॉब्लम करने लगेगा। इसको हम अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ये खुद के लिए हानिकारक होगा, प्लस समाज के लिए हानिकारक होगा। इसके साथ साथ जो है ना इसके जैसे खाने वालों के लिए या पीने वालों के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खाने के बाद ये उल्टी करने लगता है। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि खाने के बाद जो है लोग ये चोकिंग जैसा सिचुएशन होता है, मतलब ये जनरली लोग पीने के बाद जैसे जो पीने के साथ जो है ना कुछ नॉनवेज वगैरह यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि उसके चलते जो है चॉकिंग जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जब लोग पीने लगते हैं तो शुरुआत के दौर में तो चूंकि कम मात्रा में पीने से एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद जब जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इस दौरान जो है फिर लास्ट में जो है आपको जो है ना कोमा स्थिति आती है। तो शुरुआती दौर में जब पीने का जो एक्साइटमेंट वाला फेज होता है तो इसमें लोग जो है एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जैसे बाइक वाले चला रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं स्पीड से नहीं चला रहा हूँ या बहुत ज़्यादा उनको नहीं पता चल पाता, तो इसमें एक्सीडेंट होने की डर रहती है। और उसी तरह से जब वो चला रहे होते हैं तो खुद के लिए तो दिक्कत होता है, लेकिन सामने वाले की गलती नहीं रहते हुए भी वो जो गलती करने पर मजबूर करते हैं। तो एक तरह से ये एक्सीडेंट वगैरह का जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो ये नशा के चलते ही बहुत ज़्यादा हम लोग एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी ये बोलते हैं, एक्सीडेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा होने लगे, कारण भी जो है ये नशा ही है। के बाद जैसे अभी स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो ये एक्चुअली एक तरह से डिप्रेशन के कभी शिकार लोग हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग पैथोलॉजिकली बोलते हैं ये डिलीरियम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग धीरे धीरे करके जो है उसके आदि होने से क्या होते हैं कि ये मानसिक रूप से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं या फिर कोर्साकोप साइकोसिस बोलते हैं, ये सारा जो है एक तरह से डिप्रेशन का ही रूप है। फिर नेक्स्ट है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पीने वाले हैं तो उनको देखिए कि कभी कभी पीते पीते उल्टी करने लगते हैं, तो ये गले में भी एक तरह से जो है घाव हो जाता है, जिसको हम लोग मेलोरी वेज सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर चूँकि हम अभी कुपोषण उपचार केंद्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कुपोषण का भी जिक्र करना ज़रूरी है। तो ये बड़ों में भी जो है ये जो बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनमें खून की कमी आने लगती है, तो ऑटोमेटिक खान पान का जो प्रॉब्लम होता है तो उसमें शरीर में जो है जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो नहीं हो पाता, तो ये कुपोषण का शिकार भी होने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है खान पान समय पे होता नहीं है, लोग उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये एक तरह से गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर का भी कारण बनता है। फिर वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जैसे हम लोग सुने होंगे पैनक्रियाटाइटिस, तो ये शरीर में जो है आपके एक जो हम लोग पैनक्रियाज है इसका अल्कोहल के चलते जो है ना असर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो पेनफुल सिचुएशन देखा गया है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो ये इसके चलते लोगों को सुसाइड करते हुए देखा गया, पेन

0: अंदर का असर कभी नहीं भी हो सकता या सही जगह ट्रीटमेंट नहीं होने से मौत की सिचुएशन भी बनती है। उसी तरह से जो है वो हार्ट में भी असर होता है, हम लोग उसमें मायोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। और एक सिचुएशन जैसे हम लोग जानते हैं कि पीने वालों को लीवर का दिक्कत होता है, तो उसमें लीवर में भी एक्चुअली हाइपर लिपिडमिया जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, और उसमें एक्चुअली अल्बुमिन और ट्रांसफेरिन जैसे बोलते हैं उनका सिंथेसिस जो है ना कम होने लगता है। और एक अभी हार्ट अटैक वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो इन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बोलते हैं ना उसके चलते हाइपर ग्लाइसीमिया जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये जो है आपको ऑलरेडी जो तो ये हार्ट को प्रॉब्लम करता है, आने वाले समय में हार्ट अटैक वगैरह का सिचुएशन बनाता है। और आज के डेट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे यूरिक एसिड, आज के डेट में चूंकि खान पान तो हम लोग करते हैं लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के चलते जो है ये हाइपर यूरिकेमिया का सिचुएशन भी क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ जो है शरीर को नुकसान ही करता है, फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है इसमें। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया, एक जैसे कोई अल्कोहल पीने वाला जो आदमी होता है, एक मेडिकल टर्म हम लोग बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी, इसमें कभी कभी पी करके जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक जो है एक ही पोजिशन में रह जाता है, तो उसमें जो है ना रेडियल नर्व ट्रंक जो है ना वो डैमेज हो जाता है, कंप्रेशन के चलते जो है उससे सूनापन आ जाता है, उसको हम लोग सैटरडे नाइट पॉलिसी बोलते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक है। तो उसी तरह से एक अल्कोहलिक ब्लैकआउट भी बोलते हैं, जिसमें कि जो है पीने के बाद जो है ना लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है, आपने अभी से पहले आपने क्या किया था नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य के लिए तो इसका जो है असर बहुत ही ख़राब है।
1: एक बात और, हम जैसे आपने डिप्रेशन की बात तो की है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ विस्तृत थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि क्या नशे से बढ़ता है डिप्रेशन।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नशा, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि डेलिरियम ट्रीमेंस हो गया, अल्कोहलिक पोलीड्यूराइटिस एंड कोर्साकोफ साइकोसिस जो बोल रहे हैं, ये साइकोसिस ऑलरेडी जो है ये मानसिक विकार जैसे सिचुएशन ही है। तो इसमें होता क्या है कि जिनको जो है पीने का आदी है उनको अगर अचानक से बंद कर दीजिएगा तो उसमें जो है उनको रहा नहीं जाता, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि उनको एक पागलपन जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। उसके बाद जो है ना उस उन लोगों में नींद की कमी आने लगती है, फिर उसके बाद बेचैनी होती है, फिर याददाश्त वगैरह कम होने लगता है, फिर इसमें कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जैसे पीने वाले लोग हैं उनको पीना नहीं मिला तो इनको एक तरह से जो है ना भय जैसा सिचुएशन भी क्रिएट होता है। और इसमें जैसे अभी डिप्रेशन की बात कर रहे थे, इसमें पीने वाले लोगों को ये एक टेंडेंसी होता है सुसाइड करने का, या फिर किसी को जो है मारने पीटने जैसे या प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाने जैसा जो ये सिचुएशन इनके द्वारा हो सकता है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग कोर्साकोफ साइकोसिस से बात करते हैं, इसमें पेशेंट को जो है ना वीकनेस आने लगता है, फूड ड्रॉप वगैरह तो होता ही होता है, फिर उसको चाल चलन वगैरह देखिएगा तो चाल पे भी उनका जो है ये नॉर्मल गेट जो होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ना ब्रेन में भी इनका जो एक हम जो बोलते हैं ओरिएंटेशन की बात है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना भूलने लगते हैं, और बातें जो है वो सच्चाई से दूर इस तरह से जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनका जो मानसिक संतुलन एक तरह से बिगड़ जाता है। जी जी, तो ये सारा है इसमें। अल्टीमेटली ये डिप्रेशन की तरफ तो लेता ही लेता है, और अल्कोहल चूंकि ये CNS हम लोग जो बोलते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन था, तो ये एक अल्कोहल का हम लोग मानते ही है डिप्रेशन के रूप में।
1: सही। अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे, खासकर अगर हम अभी के परिवेश में देखें तो खासकर युवाओं में ये नशापान एक फैशन बनता जा रहा है, इससे समाज या परिवार में क्या प्रभाव पड़ रहा है?
0: जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चूँकि हम लोग आज यहाँ अपने युवाओं को विशेषकर ये संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आज के युवा का काम क्या है, युवा को एक्चुअली अपने समय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य निर्माण की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूँकि हम लोग को जिस समय जो काम नहीं करना होता है, विशेषकर जैसे अभी पढ़ाई से दूर रह जा रहे हैं, तो लोग क्या है कि इसको नशा को जो है अपने साथी या उनके संगत में जा रहे हैं, तो नशा युवा के लिए तो बहुत ही ख़राब है। विशेष हमें जैसे देख रहे हैं बच्चे हमारे जो है नशा के चंगुल में फंसने से जो है उनका पढ़ाई से तो नाता टूट रहा है। एक परिवार में गार्जियन सोचे कि हमारा बच्चा जो है ना स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या इनको पढ़ाई में फ्यूचर अपना लगाना चाहिए बनाना चाहिए, लेकिन ये कभी जो है ना पढ़ाई छोड़ करके जो है गलत संगति में चले जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि लोग नशा के चक्कर में जो है ना गलत संगति में एक अर्ज जो होता है कि नशा के बिना नहीं रह

0: चक्कर में लोग एक आज के डेट में KTM वगैरह का बात आप नाम सुने हैं, तो ये सारी गाड़ियां लोग लेकर के जो है और नशा के चक्कर में जो है ना कंपटीशन करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इकलौता लड़का है लेकिन पीयर प्रेशर में जो है ना उस गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के गुजर जाते हैं। तो ये युवा को भी समझना होगा, एक जिम्मेदारी के साथ जो है अपना जो जीवन है समाज के प्रति उनको जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे समझ से ये उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी हम अपने डिपार्टमेंटल हम लोग जो बात करते हैं, ये कन्वर्जेंस वगैरह जो है ये हर लेवल पर होना चाहिए। प्रशासनिक को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ तो देखा गया है कि चाबासा का अगल बगल कुछ बोर्ड लगाया गया है कि भाई आप इस तरह से जो है सार्वजनिक जगह पर आप नशापान नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको देखा जाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरह का जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो सरकार हमारे प्रशासन की तरफ से पहल तो हो रहा है, लेकिन इस पर गार्जियन को मेन भूमिका निभाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको लगता है सभी को सबसे पहले गार्जियन को निभाना है अपना जिम्मेदार, उसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों को, सब जितने भी हमारे जो शुभचिंतक है सभी को मिलकर इस पर चिंता करना पड़ेगा। और जो हमारे युवा भटक रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमको एक दिशा निर्देश या प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा।
1: एक बात और जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कभी ऐसे मरीज या हम यूँ कहें कि केस आपके पास आया है जो बहुत अत्यधिक नशा सेवन करता हो?
0: जी जी बिल्कुल, अभी मेरे प्रैक्टिस करते हुए तो करीब 15-20 साल हो गए। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जैसे लोग नशा करते हैं शुरू में तो लोग को लगता है कि ये एक इंजॉय के लिए होता है, लेकिन कभी पीते पीते लोग इसका जो ना लत हो जाता है, मतलब एडिक्शन में चले जाते हैं। तो मैंने एक ऐसे भी पेशेंट को देखा है जिनको जो ना डॉक्टर ने बताया कि भाई आप अगर समय से नहीं छोड़ोगे इसको तो आपको कैंसर हो सकता है। ये ऑटोमेटिक हम लोग बोलते हैं, ये सिरोसिस तो होता ही होता है, उसके बाद कैंसर जैसा सिचुएशन बन सकता है। तो ऐसे एक लोग से मेरा परिचय हुआ है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, मतलब वो अपना लत छोड़ नहीं पाता, जिसके चलते जो ना उनका कहना था कि भाई हम इसको तो छोड़ नहीं पाता, कम से कम मेरे परिवार के लोग सही रहे, तो इससे हम अपने आप को इस दुनिया से हम अलग ही कर लेते हैं। तो इस तरह का हमने पहले भी जैसे आपको इंटरव्यू में बताया था कि सुसाइडल टेंडेंसी होता है, तो एक मेरे अभी तक की जिंदगी में हमने सुसाइड करते हुए देखा है। दूसरा जो है सिरोसिस में जो है हमने आपको बताया कि एल्बुमिन वगैरह का जो सिक्रेशन कम होने लगता है, तो उससे क्या है कि पेट में जो है ना एसाइटिस वगैरह सब जो होता है वो डेवलप होने लगता है, उसमें बार बार आपको पानी निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें जस्ट एक कंप्रोमाइज करने भर की बात होती है। तो इससे उस पेशेंट को तो दिक्कत होता ही है उसका, और आने अपने जैसे मरीज का जो लोड हमारे पास जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, चूँकि हम उसको बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, लीवर उनका ख़राब हो चुका है। तो विशेषकर हमने वही दो चीज़ देखा, ऊपर से जैसे कुपोषित जो हो जाते हैं तो उनको ट्यूबरक्लोसिस होने का भी डर रहता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, तो ये अल्कोहलिज्म एक कारण बनता है जैसे कि टीबी का जो है दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या जैसे अभी टीबी के मरीज का अगर हम लोग दवाई खिलाते हैं तो वो चूँकि उनका लीवर कमज़ोर रहता है तो वो दवाई नहीं खा पाते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे मरीज मिलते हैं, टीबी वाले मरीज मिलते हैं, सिरोसिस के मरीज मिलते हैं, तो पेशेंट का तो भरमार है हमारे पास।
1: तो डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, इस भेंटवार्ता के साथ ही आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा FM के 101.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

रसरंजन कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म बाहर आने तक से। आवाज़ें हैं पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की।

मोहब्बतें, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान श्वेता पंडित सोनाली और प्रीता मजुमदार की।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वर में दिल फिल्म का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रसरंजन कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हीरो फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की।

हीरो फिल्म के इस गाने के साथ ही रसरंजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी।
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
0: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
2: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
2: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
2: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय

0: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
1: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो। हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं। अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
2: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
1: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
2: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
1: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
0: अचानक
2: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
1: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
2: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
0: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
1: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
0: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
2: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
0: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
2: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
0: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
2: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
2: बच गए, लगता है रीच चला गया।
0: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
1: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
1: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
2: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास

0: पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा मा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरा मा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरा मा,
2: हाँ?
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरा मा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ,
5: हम सब तैयार हैं।
4: पेड़ नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: हाँ, और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
7: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बयान,
7: मिट्टी पानी और बयान,
8: जिंदा रहने के आधार।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
10: अरे कहां से?
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
10: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
6: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
11: नहीं लगाने देंगे।
6: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
10: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
6: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन। अभी आपने सुना का

संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयवासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, दिन के 10:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दोस्तों, जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, बल्कि मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जोहार रांची में। इस कार्यक्रम में आप सबों को विनीता का जोहार और नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ है
1: मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रचना। आप सबको भी मेरा नमस्कार जोहार, और विनीता तुमको भी।
0: आपको भी रचना, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
0: और वैसे भी जब हम साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो अच्छा तो होना ही है।
1: हाँ बिल्कुल। और वैसे भी आपने अभी शुरुआत में ही कह दिया ना कि मीठा खिलाकर ही नहीं मुंह मीठा कर सकते,
0: तो हम लोग मीठा मीठा ही बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना है ना।

0: जोहर रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है और आप हैं रचना और विनीता के साथ। तो अब वक्त है एक अच्छे से सुविचार का। कहते हैं ना, किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास पहली अनिवार्यता है। किसी भी कार्य की नींव का मजबूत पत्थर आत्मविश्वास ही है।
1: तो हमें भी आत्मविश्वास के साथ ही किसी भी काम को करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें या डिग्री हासिल कर लें, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि खुद को अंदर से मजबूत बनाएं और हर काम को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ करें। फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमती है।
0: बिल्कुल।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: और अब कुछ बातें मौसम की। क्या रचना?
5: बिल्कुल, वैसे भी हम देख ही रहे हैं ना, मौसम का मिजाज है फिर से आगे बदलने वाला,
4: कहा जा रहा है।
5: अभी तो आज तो बहुत धूप है
4: सचमुच। और वैसे भी मौसम के बारे में कुछ भी कहना आजकल सही नहीं है, क्योंकि कब क्या बदलाव हो रहे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार से, मतलब यानी कि आज से अगले 4 दिनों तक रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया है।
5: और ऐसा भी बोला जा रहा है ना कि अब जो है भारत में ज्यादा दिन बिताने लगा है मानसून, यानी कि जो है मानसून पहले आ जा रहा है अपनी निर्धारित तिथि से,
4: आ भी रहा है पहले और जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। पिछले साल हमने देखा है
5: बहुत बारिश,
4: अक्टूबर तक बारिश रही है, तो इस बार भी वैसे ही कुछ आसार लग रहे हैं और मौसम विभाग का भी यही अनुमान है। इसकी वजह से ही तापमान में गिरावट भी आई है, 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी गई है।
5: और आज का अगर हम तापमान की आज की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री है और न्यूनतम 20.9 डिग्री

0: सेल्सियस है।
1: तो कहने का मतलब यही कि अगर बाहर धूप भी है तो मौसम के झांसे में ना आए, क्योंकि कभी भी मौसम बदल
0: बदल
1: सकता
0: सकता है,
1: है।
0: कभी भी बारिश हो सकती
1: तो
0: है,
1: आप जब भी निकले, ऐसे भी धूप हो या बारिश, छतरी तो जरूर
0: हमेशा
1: लेकर
0: होनी
1: निकले।
0: चाहिए।
1: और साथ ही ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो गर्मी में कुछ कमी है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और जो जो सावधानियां इस मौसम में हमें लेनी चाहिए वो जरूर लेती
0: जरूर
1: रहें। क्यों
0: लें,
1: रचना?
0: बिल्कुल छतरी होनी चाहिए और पानी की बॉटल भी हमेशा साथ होनी चाहिए। दो चीजें तो हमेशा साथ होनी ही चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: जोहराची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के दिन की करते हैं। क्यों रचना? आज के दिन यानी कि आज के इतिहास की। इतिहास के पन्नों में 3 जून के नाम कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है और आज का दिन भारत के इतिहास और भूगोल के बदलने वाले दिन के तौर पर जाना जाता है इतिहास में।
1: और 1947 में आज के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना के तौर पर भी जाना जाता है।
0: इसलिए आज के दिन को कुछ खास बताया जाता है क्योंकि आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की नींव रखी

0: बातें हो रही आज के दिन की, तो बताएं कि आज ही के दिन यानी कि 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, और 1918 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की थी।
1: और अगर बात करें 1967 की, तो 1959 में सिंगापुर के सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था, और 1972 में देश के पहले आधुनिक युद्ध पोत नीलगिरी को देश की पहली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावर्तित किया था। और 3 जून 1985 में भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया था।

0: इतिहास की बातें हम कर रहे हैं रीता।
1: और अब उनकी भी बातें कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो उन सभी को आकाशवाणी रांची की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए बताते हैं कि आज किनका किनका जन्मदिन है। तो 1941 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रूमा पाल का जन्म हुआ था।
0: और 1867 में हरविलास शारदा, जो कि भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और विद्वान थे, उनका भी जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक रहे बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में आज ही के दिन हुआ
1: हुआ
0: था।
1: था।

0: दिन की बातें भी हम करते हैं, है ना,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आज है विश्व साइकिल दिवस और ये दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है परिवहन को एक सरल, किफायती, प्रदूषण मुक्त साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। और 2026 के लिए थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना।
1: और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि साइकिल के कितने फायदे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: सब जानते हैं। इसलिए तो देखिए आजकल लोग, मतलब बड़े बड़े लोग गाड़ी छोड़कर साइकिल से आना जाना शुरू कर रहे हैं।
1: वैसे भी साइकिल जो है ना, एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि कसरत के लिए बहुत अच्छी,
0: बहुत अच्छी जगह है। जो आप परेशान रहते हैं कि वजन कम कैसे होगा या फिट कैसे रहें, तो बस साइकिल ले आइए अपने डेली रूटीन में, फिर देखिए कैसे हर चीज का निवारण आपको मिल जाएगा, है ना। और पर्यावरण से सुरक्षित तो रहता ही है, और साथ ही ये हमारे, जैसा कि हमने बताया, कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और ईंधन और रख रखाव का खर्च ना होने पर ये बहुत ही सस्ता और किफायती है ना।
1: बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है डीजल पेट्रोल भी कितने महंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है साइकिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भले ही ज्यादा दूरी आप इससे तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नजदीक की दूरी है इससे आप तय कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि विश्व साइकिल दिवस है, तो हम ये भी बता दें कि अपने श्रोताओं को कि नीदरलैंड जो है इस साइकिल दिवस में, यानी कि नंबर वन पर है, वहाँ पर जो है रोजाना सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग हैं, और लगभग 58% लोग नियमित रूप से वहाँ पे साइकिल चलाते हैं।
0: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना।
1: हाँ।
0: और अभी आप देखेंगे तो कितनी महंगी महंगी साइकिलें भी आने लग गई है ना।
1: सही में, और जिनको साइकिल का शौक होता है ना, वो महंगी से महंगी साइकिल भी खरीदते
0: हैं और चलाते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि कितने फायदे हैं साइकिल के। तो अगर आज का दिन मनाना है, यानी कि खास बनाना है, तो साइकिल को अपने उपयोग में जरूर लाएं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को ये दिवस मनाने का घोषित किया गया था, और आज ही के दिन यानी कि 3 जून को 1918 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी।
1: और हम ये भी बताते अपने श्रोताओं को कि साइकिल का आविष्कार जो है वो 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन राइस ने किया था, और पहली साइकिल जो बनी थी उसमें पैडल नहीं थे, इसे पैरों से चलाया जाता था।
0: सोचिए, और अभी कितनी, मतलब कितना आगे जा चुका है, गियर वाली साइकिल भी आ गई है, और कितने डिजाइनर साइकिल आ गए ना, देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, तो आप
1: रंग बिरंगी साइकिल
0: बिल्कुल

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं जोहार रांची विनीता और रचना के साथ। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नजर या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है।
1: जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं हमारे झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता से तो हर कोई वाकिफ है ही, और यहाँ की प्रकृति हमें पर्यावरण से अलग ही प्रकार से जोड़ कर रखती है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने और घूमने के बाद ऐसा लगता है मानो सब कुछ छोड़कर यहीं बस जाए।
0: बिल्कुल, तो आज एक ऐसी ही खूबसूरत जगह के बारे में हम आपको बताएंगे जो आजकल काफी फेमस हो रहा है और जिसे लोग ब्लू पॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे लेकिन इस खूबसूरत से गीत के

0: चलो तुमको लेकर चले। जी हाँ, आपको आज हम ब्लू पॉन्ड की ओर ले जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, तो आपको बताएं कि ब्लू पॉन्ड एक मानव निर्मित छोटा सा पत्थर का खदान है जिसका पानी नीला है, जिस कारण से इसे सभी ब्लू पॉन्ड के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, और इस खदान से खनिज पत्थर निकालने के लिए के बाद ही यहाँ का जल का जमाव नीचे पत्थरों पर होता है जो नीले रंग का दिखता है। और यहाँ की पत्थरों की कटाई के कारण चारों ओर दीवार सी बन गई है जो इस जगह को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करती है। इस नीले जल ने ही ब्लू पॉन्ड को जन्म दिया है।
0: बिल्कुल, और ब्लू पॉन्ड का पानी इतना नीला कैसे है, इसी को जानने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये पॉन्ड रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर बालसिंग नामक स्थान है, वहां पर है। रिंग रोड से होकर बालसिंग नामक जगह से रोड छोड़कर बाईं ओर कच्ची सड़क पर जाना होता है यहाँ पहुंचने के लिए, और कच्ची सड़क में छोटे बड़े गड्ढों को पार करते हुए आप यहाँ पहुंच सकते हैं।
1: और स्थानीय लोगों के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, शांत हरियाली सब कुछ है यहाँ पर। और एक बात और कि बाइकर्स और साइकिल राइडर्स के लिए जगह बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहता है, तो एक बार तो यहाँ जाना जरूर बनता है। मेघों के साये में, गिरी के बाहों में सुकून बसता है, प्रकृति तेरी पनाहों में।

0: बहुत सारी बातें हमने कर ली, पर खेल के बिना तो हमारा प्रोग्राम अधूरा है ना। तो चलिए आपको बताते हैं खेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो जमशेदपुर में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जनकल्याण समर्पण संस्थान सिकिदरी की तैराक पिंकी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। पिंकी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रजत अपने नाम किया है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है मेरे लिए। और झारखंड में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर आयोजित झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का शुभारंभ बुधवार को यानी आज जेएससीए स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में होगा। उद्घाटन समारोह सुबह 8 बजे आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला कोल्हान डायनामोज और छोटा नागपुर ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मैच संताल चैलेंजर्स और पलामू वॉरियर्स के बीच दोपहर 12:30 बजे होगा। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं और प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे।

0: रचना, देखिए बातों बातों में अब वक्त हो गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि किसी को खुश रखने का या करने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं।
1: तो बस आप भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। इन बातों के साथ ही जोहार रांची कार्यक्रम में आज का अंक बस इतना ही। अब अपनी दोस्त रचना
0: और विनीता,
1: को दीजिए विदा।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका स्वागत है. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सैलाब फिल्म के गीत के साथ. और इस गीत की फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की.

अनुपमा देश पांडे की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपने अभी सुना सहलाब फिल्म से। और अगली फरमाइश आई है दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय की। साथ ही कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय की। और इन्होंने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म का गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और अब अगली फरमाइश हमने ली है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिबा कौर की। साथी बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर डब्ल्यू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर की। और इन्होंने सुनना चाहा है साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं घरौंदा फिल्म का गीत रूना लैला की आवाज में, और इस गीत की फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज रजा की, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ है शिल्पी और निधि।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका और आज मेरे साथ है शिल्पी।
1: नमस्कार बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगी और प्रसन्न होंगी।
0: हाँ शिल्पी, और प्रसन्नता के लिए तुम्हें पता है ना कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो बहनों, हम बातें करेंगे आज पर्यावरण के ही बारे में और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए। और शिल्पी, यूं तो हम पर्यावरण के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं, है ना, लेकिन आज हम जानेंगे कि साइकिल का जो प्रयोग है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे बचाता है।
1: बिल्कुल निधि, ठीक कहा आपने। और साइकिल की सवारी तो हमारे लिए काफी सुविधाजनक है और इसके लाभ भी कई हैं बहनों। पर्यावरण के संरक्षण के लिए साइकिल परिवहन का सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, जो कार्बन उत्सर्जन को घटाने, हवा की गुणवत्ता सुधारने और ईंधन की बचत करने में मदद भी करती है।
0: सही जानकारी दी तुमने शिल्पी, और बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानते भी हैं। साइकिल में जैसा कि
1: हम सब जानते हैं,
0: बिल्कुल, कि पेट्रोल या डीजल की जरूरत तो होती ही नहीं, और इसी कारण से वायु प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वाहन से धुआं नहीं निकलता है बिल्कुल साइकिल से। और साइकिल से अन्य वाहनों के मुकाबले ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता
1: बिल्कुल।
0: और साइकिल की सवारी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इससे सड़कों पर जाम की स्थिति काफी कम हो जाती है ना।
1: और साइकिल को हम निधि कहीं से भी निकाल सकते हैं।
0: हाँ,
1: जैसा कि आपने जाम की बात कही, तो बड़े बड़े वाहनों की वजह से सड़कों पर काफी भीड़ लग जाती है। हमने कई बार इसे महसूस किया है, झेला भी है, और हम ट्रैफिक जाम की समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। तो साइकिल की बनावट ऐसी होती है बहनों की यह सड़क पर काफी कम जगह लेती है और हम कहीं से भी इसको
0: बिल्कुल। तो अगर ट्रैफिक जाम में आप फंस गए हैं और अगर आप बड़े वाहन में बैठे हैं तो भाई आप तो मुश्किल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर कोई साइकिल लेकर जा रहा है तो वो बड़ी आसानी से।
1: और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम भी साइकिल की सवारी करते होते तो हम भी यहाँ पे फंसे नहीं होते।
0: सही कहा, हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और सबसे अच्छी बात है कि जरूरत पड़ने पर हम इसे पैदल लेकर भी चल सकते हैं। जैसे भीड़ की स्थिति है तो हम साइकिल से उतर गए और हम इसे लेकर चल रहे हैं, और जिधर भी रास्ता हमें मिला उधर से हम निकल गए, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में हम इसे लेकर आसानी से निकल जाते हैं। और जिस जगह पर हम 6-7 साइकिलें रख सकते हैं वहीं पर सिर्फ एक बड़ा वाहन ही हम रख सकते हैं, है ना, तो इससे फर्क तो बहुत
1: पड़ता है। बिल्कुल बहनों, साइकिल चलाने के और भी कई लाभ हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। साइकिल चलाना एक काफी अच्छा व्यायाम है और इससे हमारा वजन भी कम होता है और साथ साथ हमारे जो पैरों की मजबूती है बढ़ती है। इसलिए हमने अपने बच्चों को, जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं निधि, बहनों से भी कहना चाहूंगी कि एक साइकिल जरूर देना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा होता है ना, इन दिनों की बात है कि बच्चे बैठ कर गेम खेलना चाहते
0: बिल्कुल
1: हैं। तो अगर उनके पास साइकिल होगी तो निश्चित है कि शाम को अपने दोस्तों के साथ वो निकल पड़ेंगे साइकिल की सवारी पे।
0: बहुत खूब, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी। और ऐसा कहा जाता है, और आजकल तो इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है शिल्पी, कि अगर आप थोड़ी दूर जा रहे हैं स्कूटर से, बाइक से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साइकिल पर जाएं। और साइकिल चलाते रहने से हमें संतुलन बनाए रखने की आदत रहती है ना, क्योंकि बाकी जो वाहन है उसमें संतुलन की उतनी जरूरत नहीं होती, और साइकिल में आपको संतुलित रखना है तो आप बिल्कुल इसका अभ्यास रहता है आपको। और आमतौर पर एक उम्र के बाद लोगों को चलने या दौड़ने में संतुलन बिगड़ने की जो समस्या है वो सामने आती है, तो साइकिल की सवारी से हमारा आत्मविश्वास संतुलन के मामले में कायम रहता है।
1: बिल्कुल, और साइकिल चलाने से हृदय भी स्वस्थ रहता है, वजन की, जैसे कि हमने कही कि वजन भी हमारा नियंत्रण होने लगता है, यानी कई, जब वजन हमारा कम होता है बहनों, तो हम कहीं ना कहीं कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पास नहीं आती,
0: दूसरी बीमारियों से बच जाते हैं,
1: तो हम अन्य और बीमारियां जो आने से पहले हम बच सकते हैं अगर हम साइकिल की सवारी करें। और निधि, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन हमने देखा है कि आजकल हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो भी साइकिल चलाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है देखते हैं जब, है ना।
0: क्योंकि ये जो है ना कि बीते वर्ष में लोग ये समझने लगे थे कि साइकिल तो भाई ये किशोरों के लिए है या छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, और एक उम्र के बाद लोग साइकिल चलाना छोड़ देते थे क्योंकि बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। लेकिन आजकल तो मैं देखती हूँ सड़कों पे कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, वो भी साइकिल चला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है,
1: बिल्कुल,
0: और इसमें इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं इससे आर्थिक मदद भी कहीं हो जाता है,
0: क्योंकि साइकिल कम कीमत में आती है और दूसरे
1: पेट्रोल डीजल इसकी समस्या भी नहीं होती है। बड़ा ही अच्छा आसान भी तरीका है और शरीर के लिए भी स्वस्थ है।
0: तो दोनों ही तरफ लाभ है, एक तो हमारे लिए खुद, हमारे परिवार के लिए और साथ साथ पर्यावरण के लिए। तो बहुत ही अच्छी सवारी है, तो हम चाहेंगे कि सभी अपनाएं इसे अपने जीवन में, है ना शिल्पी। तो चलिए अब हम भी साइकिल की सवारी करते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
7: एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और निधि अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें।
8: हाँ, तो बहनों, पेश है भेंटवार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण का सरल उपाय 3R। आज भेंटवार्ताकार हैं प्रीति भारती और इनसे बातें कर रही हैं शिल्पी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
9: बहनों, बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में हम सभी की छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। पर्यावरण को बचाने का एक आसान और प्रभावी तरीके हैं 3R, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, यानी जरूरत से कम उपयोग करना, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना। ये तीन सरल कदम न केवल कचरे को कम करते हैं बल्कि ऊर्जा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी करते हैं। तो आइए आज हम इस बातचीत के दौरान जानेंगे कि 3R क्या है, इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे हम सभी मिलकर एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और आज हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान हैं। आप हैं प्रीति भारती, आप शिक्षिका हैं। तो प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
10: नमस्कार आप सभी को।
9: जी प्रीति जी, सबसे पहला सवाल है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में हम महिलाएं अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके बारे में बताइए।
10: जी, बड़ा ही शानदार और सुंदर सा सवाल है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुयामी है, और जैसा कि वे प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण संसाधनों की प्रबंधक भी हैं, जागरूक प्रहरी भी हैं और संरक्षण आंदोलनों की रीढ़ भी रही हैं।
9: जी।
10: अब देखें तो यदि हम बात करते हैं 1970 में अमृता देवी की, तो जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे, और वहीं अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए जो 1970 में गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ, तो महिलाओं ने किस तरह से पेड़ों से लिपटकर उनकी कटाई को रोका, ये भला कौन भूल सकता है।
9: बिल्कुल
10: जी। और आधुनिक समय में भी हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा ही बदलाव ला रही। अब बात करते हैं तुलसी गौड़ा जैसी महिलाओं का, जिन्होंने जंगल के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और वहीं वंदना शिवाजी जो पारिस्थितिकी के विषय में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर को कौन भूल सकता है भला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सभी वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। तो मेरा मानना है कि महिलाएं ही अपने परिवार की पहली शिक्षिका भी हैं। वे बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम, लगाव, पर्यावरण अनुकूल आदतों को के संस्कार को डालती हैं। जैसे घरों में कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण तथा उनकी देखभाल जैसे कार्यों में कैसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाएं और प्रकृति तो दोनों ही सृजन करता है।
2: बिल्कुल,
10: महिलाओं की सहभागिता के बिना पर्यावरण संरक्षण को सफल बनाना कहाँ कहाँ से संभव हो पाएगा। तो महिलाओं को तो अपनी भूमिका अच्छे से और आगे बढ़कर निभानी है।
2: जी, बचपन से देखा है कि अपने घर में जो हमारी माँ होती हैं, बड़ी बहन या भाभी, सभी लोग घर में तुलसी, आंवला, केला वृक्ष, वट वृक्ष इसकी पूजा करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात आती है कि इन पौधों को हमें बचाकर रखना है, चाहे तेज धूप हो या बारिश, है ना?
10: जी बिल्कुल।
2: तो महिलाएं भाई शुरू से इसमें अग्रणी रही हैं। और प्रीति ये बताइए कि हमने 3R की बात कही, तो 3R का अर्थ क्या है, इसके बारे में जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे।
10: हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि 3R का अर्थ हुआ, पहला तो है R, 3R मतलब पहला हुआ रिड्यूस, कम उपयोग करना, दूसरा हुआ रीयूज, फिर से पुनः उपयोग करना, और तीसरा हुआ रिसाइकल, पुनर्चक्रण करना। तो जैसा कि स्पष्ट है कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाती है। 3R अपनाने से कचरे की मात्रा भी घटती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है। देखा जाए तो प्रदूषण में भी बहुत कमी आती है। तो आज के समय में इसका पालन अति आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक है कि कचरे के ढेर को कम किया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को भी रोका जा सके।
2: जी, और आपने जो कही अभी रियूज, रिड्यूज और रिसाइकल, इसका मैंने क्यों आवश्यकता पड़ी आखिर, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे।
10: जी जी बिल्कुल। पहला रिड्यूज जो है उसका अर्थ होता है कम करना, मतलब जैसे अनावश्यक चीजों की खरीदारी कम की जाए और संसाधन जैसे बिजली बचत की जाए, पानी की बचत की जाए, कागज आदि की बर्बादी को न्यूनतम किया जाए। तो ये रिड्यूस हुआ, कम उपयोग करना, अनावश्यक उपयोग नहीं करना। और दूसरा है रीयूज, जिसका अर्थ होता है पुनः उपयोग करना, जैसे किसी भी वस्तु को फेंकने से पहले उसका हम दोबारा उपयोग कर लें। जैसे हम देखते हैं ना कि शीशे के जार आते हैं, तो क्यों ना उन शीशे के जार के डब्बों में मसाला रख लें, पुराने कपड़ों को हम पोछा के रूप में प्रयोग करें और उसका थैले के रूप में प्रयोग करें। तो ये रीयूज इस तरह से करके हम काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोक सकते हैं। और तीसरा रिसाइकल हुआ था तो उसका पुनर्चक्रण, जिसका अर्थ हुआ अनुपयोगी चीजों को कारखानों या केंद्रों में भेजकर उनसे नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। इसे हम देखते हैं ना कि पुराने अखबार हुए, प्लास्टिक की बोतल हुई और कांच के टुकड़े को रिसाइकल करके नया रूप दिया जा सकता है।
2: जी।
10: तो यह सतत विकास और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे लिए।
2: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और प्रीति जी, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से कैसे करें, किस तरह से, ये बताइए।
10: जी, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए।
2: जी,
10: जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे कम करने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे हम कर सकते हैं ना कि कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, थैले लेकर नहीं जाते हैं, तो प्लास्टिक के थैलों में हमें सामान दिया जाता है, तो क्यों ना अपने घर से ही बाहर निकलते वक्त कपड़े या जूट की थैले ले लें, जिससे कि हमेशा थैला साथ में रखेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा। प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के कप और स्ट्रॉ का बहिष्कार करें, और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न के बराबर करें। और सबसे बड़ी बात है कि गीला व सूखा कचरा अलग अलग करें, ताकि सूखे प्लास्टिक कचरे को आसानी से रिसाइकल किया जा सके। जहाँ तक कि मतलब इस तरह के अगर कदम हम उठाते हैं तो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक कदम हमें अवश्य उठाने चाहिए।
2: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और आपकी बात से एक बात मुझे याद आई कि भाई अभी नया प्रचलन है कि हम जाते हैं खाली हाथ और ये सोचते हैं चाहे हम साग सब्जी खरीदें, फल खरीदें या कोई सामान, तो अच्छा सा कैरी बैग हाथ में लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन यही सोच पहले नहीं थी प्रीति जी, जब हम घर से बाहर जाते थे तो हमारे घर में जो माँ होती थी पुराने कपड़ों से बड़े सुंदर सुंदर डिजाइनदार झोला सिलते थे और उसी झोले को लेके हम बाहर जाते थे, तो वो आदत हमें ऐसा लगता है ना कि फिर से हमें अपनाने की जरूरत आ गई है।
10: बिल्कुल।
2: और उम्मीद है कि हमारी बहनें हैं ऐसा अगर करें तो शायद हमारे घर में जो प्लास्टिक कचरे की हमने बात कही तो हमारे यहाँ ऐसा थैला आएगा ही नहीं।
10: जी।
2: और प्रीति जी आप एक शिक्षिका हैं, आप बताइए कि बच्चों की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है, कैसे उन्हें क्या बताएं ताकि बच्चे भी अपने पर्यावरण के बारे में थोड़े से जागरूक बने।
10: जी। एक शिक्षिका होने के नाते मेरा मानना है ना कि हमारे बच्चे आने वाले कल के रक्षक हैं।
2: जी।
10: और उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। वे वृक्षारोपण को समझें, जल संरक्षण समझें, स्वच्छता अभियान, कचरा पृथककरण तथा प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाकर हमारे मतलब हमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और जब बच्चे स्वयं जागरूक हो जाते हैं तो वे अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करते हैं। जैसे बच्चे तो राष्ट्र का भविष्य है और उनके माध्यम से समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव हम बच्चों के माध्यम से ही रख सकते हैं। जैसे मैं मेरा मानना है कि बच्चे अगर उनका जन्मदिन है या कोई विशेष अवसर है तो हम उन्हें बताएं कि अपने विशेष अवसर पे पौधे लगाओ, लंच बॉक्स में प्लास्टिक के रैपर के बजाय स्टील के डिब्बे का इस्तेमाल करो और अपने विद्यालय और अगल बगल आस पड़ोस को साफ रखो। इन छोटी छोटी आदतों को बच्चों में विकसित करना आवश्यक होगी।
2: जी। और बहुत अच्छी आपने बात कही कर तो मैं उसका मनचाहा हम पौधा भी दे सकते हैं गमले में।
10: जी,
2: है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट हमारे कहीं किसी घर के कोने में पड़े रहते हैं लेकिन जब अगर एक पौधा हो तो निश्चित हम उसे अपने बाग में लगा देते हैं।
10: जी।
2: तो बहुत अच्छी बात है कि अगर शुरुआत हम घर से करें, बच्चों को सिखाएं ऐसी छोटी छोटी बातें तो बच्चे अपनी भूमिका तो निभाएंगे बखूबी। प्रीति जी चलते चलते श्रोता सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि भाई इतनी सुंदर हमारी ये जो प्रकृति है, सुंदर वसुंधरा है, कैसे हम किन उपायों से बचाएं?
10: मैं अपनी श्रोता सखियों से कहना चाहूंगी कि यह सुंदर वसुधा केवल हमारी संपत्ति तो नहीं है बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। तो यदि हम आज प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला समय में सीआर के सिद्धांत याद रखें, पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे बचाने के लिए हमें अपनी दैनिक आदतों में थोड़ा बदलाव तो लाना होगा। आज सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे और पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा रखेंगे।
2: बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तभी हम कहीं घूमने जाएंगे और हम नए नजर से उसे देख पाएंगे। और जब हम घूमने जाते हैं पर्यटन का, तो खैर अभी गर्मी की छुट्टी है तो बच्चे बड़ी सुंदर सुंदर याद को अपने आंख में कैमरे के रूप में बंद करके लौटते हैं घर पे। तो आपने प्रीति जी बहुत अच्छी बात बहुत सरल शब्दों में रखा और उम्मीद है कि हमारी श्रोता सखियों जो है सुन रही है कार्यक्रम को, उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। और आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम में, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
10: धन्यवाद।
8: बहनों अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, पर्यावरण संरक्षण का सरल उपाय 3R। मेहमान थी हमारी प्रीति भारती और इनसे बातें कर रही थी शिल्पी। और शिल्पी अब क्या इरादा है?
7: इरादा है इतनी अच्छी जानकारी के बाद।
8: साइकिल का गीत तो हमने सुना दिया,
7: अब चलते हैं एक और गीत बहनों को सुनवाते हैं।

0: और बहनों हमने साइकिल की सवारी भी कर ली, गीत भी सुन लिया, और अब जब तक गृहलक्ष्मी में रसोई की बात ना हो तो भला सुना सा लगता है निधि, है ना?
1: बिल्कुल शिल्पी। तो रसीली रसोई में आज हम लेकर आए हैं बहनों के लिए गर्मियों के स्वादिष्ट पेय, यानी कि ड्रिंक्स जो घर में हम बनाते हैं ना। तो इन दिनों गर्मी तो काफी पड़ ही रही है और घर से बाहर हमें निकलना भी पड़ता है, ऐसे में हमें स्वादिष्ट, पौष्टिक और तरोताजा कर देने वाले पेय की जरूरत पड़ती है ना।
0: तो आज हम अपनी बहनों को रसीली रसोई के तहत आपको बताएंगे कि गर्मियों के कुछ स्वादिष्ट पेय के बारे में। और सबसे पहले आइए हम जानते हैं बनाने के लिए मसाला छाछ बनाने की विधि कैसे बनेगी।
1: बहुत ही पसंदीदा है ये लोगों का,
0: ये
1: है
0: लगता
1: ना?
0: ऐसा चटपटा है कि शायद सबको अच्छा लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, और दही होने की वजह से काफी ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मसाला छाछ बनाने के लिए आपको बहुत ही साधारण विधि है, एक कप दही में ठंडा पानी मिलाएं और इसे इसमें भुना जीरा, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर अगर आप लेना चाहें तो, और पुदीने की जो पत्तियां हैं उसे मिलाकर अच्छी तरह से मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लें और तैयार है आपका मसाला छाछ।
0: बिल्कुल, और निधि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दही, जितनी भी सामग्री हमने बताई अपनी सखियों को, वो सारा चीज हमारे घर में ही रहता है, तो बहुत ही आसान है ना।
1: हाँ बिल्कुल, और अभी तो कच्चे आम मिल रहे हैं, है ना? हाँ, गर्मियों में तो आम पन्ना भी काफी लोकप्रिय है। सामग्री बिल्कुल साधारण है, कच्चे आम और साधारण मसाले जैसे भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, काला और सफेद नमक हमें चाहिए, और विधि भी बहुत साधारण है। शिल्पी बता दो बहनों को।
0: बहनों अगर आप कच्चे आम को उबाल सकते हैं तो

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोल आकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को

0: देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं
0: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी,
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात ये है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
8: क्या करेंगे?
10: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीछ की आवाज है।
11: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
12: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
8: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
12: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
8: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
8: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
12: ओ, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
12: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
12: रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।

0: बच गए। लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
0: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
0: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
2: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम अरवानिया, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
7: मैं, तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
6: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
6: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
6: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
9: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
9: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
9: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
9: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगूर का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
7: गौरमा, गौरमा,
11: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
7: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
11: कौन लोग आ रहे हैं?
7: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
11: हाँ,
7: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
11: क्या?
7: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
11: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
12: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
11: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
13: बिल्कुल,
11: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
12: हाँ, हाँ, सब तैयार हैं। तैयार हैं।
13: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
12: नहीं कटने देंगे।
7: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।

0: तब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: आगे बढ़ो।
3: अरे कहाँ से?
2: दो मिनट की बात हमें बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी काम के लिए।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
3: नहीं लगा।

0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहां के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, एक बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
1: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं उनके कोई जमीन नहीं जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है
0: West Bengal former ruling party, the Trinamool Congress, is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Rita Bratta Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandeep Chattopadhyay as the leader of the House, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education CBSE has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues, observed and scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and the Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of the state by Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4 p.m. in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है और उन्हें विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए।
1: हम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े। अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी खामियों और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला हितैषी पंचायत के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 17,500 की आबादी वाली इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी समेत 8 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग भी की है, ताकि महिलाओं और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि इस पंचायत की तरह ही अन्य पंचायतों को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे।
0: आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। निजी प्रबंधन संस्थानों में जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि आईआईटी धनबाद सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में 11वें स्थान पर रहा। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को प्रबंधन शिक्षा में 18वां, बीआईटी मेसरा को निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में 10वां तथा आईआईटी को अपनी श्रेणी में 18वां स्थान हासिल हुआ। आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। उपाधीक्षक डॉक्टर राजकिशोर के निर्देश पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइप को बदलकर ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने भी मामले की जानकारी मिलने पर अपने प्रतिनिधि को अस्पताल भेजा और स्थिति की जानकारी ली। खूंटी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से सप्ताह भर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला वन पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले के विभिन्न गांवों, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर वन रक्षक GFMC गांव के मुखिया प्रधान जाके वहां पे बैठक करें और विश्व पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु है उसके बारे में गांव से विचार विमर्श करें और क्या अपेक्षित है वन विभाग से और किस तरह से हम और एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन है।
0: पाकुड़ के अमरापाड़ा में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कई पेड़ों की कटाई की गई। DFO सौरभ चंद्रा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है।
4: अमरापाड़ा रेंज में पकलों के पास एक रोड RU विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसकी पूर्वानुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। स्थलीय प्रबंधन के कारण में जो हमारे वहाँ प्रधान वनरक्षी उन्होंने पाया था कि बिना अनुमति के वहाँ पर रोड बनाने के क्रम में कई पेड़ को उखाड़ दिया गया है और वन भूमि का वहाँ पर नष्ट किया गया है।
0: सरायकेला में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह की 130वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलाकारों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने छऊ नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया तथा इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जापान में चल रहे U18 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी ने भी 1-1 गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग ने भारतीय टीम तथा राज्य के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर वेंडरों और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को QR कोड आधारित डिजिटल पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टाटानगर इस व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। देवघर में आयोजित जनता दरबार में मदद की गुहार लेकर पहुंचे दिव्यांग भवेश को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दानपात्र खोले गए। गिनती के बाद दानपात्रों से कुल करीब 26 लाख रुपए प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच

समिति गठित। IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में XLRI देश में दूसरे स्थान पर और IIM रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसमें आज आप सुनेंगे राग देव गंधार, कलाकार हैं गिरिजा देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना राग देव गंधार, कलाकार थी गिरिजा देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

जून माह की खेती पर हो लोकगीत आप सुनेंगे। सिनेमा यालडा और उनके साथियों से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। टमाटर की खेती कब और कैसे करें इस विषय पर भेंटवार्ताकार होंगे अनिकेत गो। उड़ियार लोकगीत के कलाकार होंगे दिलीप निषाद और उनके साथी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर कार्यक्रम सुनेंगे आप हो आंकड़ा और 6:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम मनोरमा, जिसमें चर्चा की जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना पर और जानकारी के बातों के अलावा मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी दी जाएगी। और शाम 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय होगा मध्यम वर्ग कल्याण। सात पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रोताओं के पसंद पर आधारित आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जो कि आपके फरमाइश पर आधारित होगा। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। 9:15 पर पुनः आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के रांची केंद्र। रात्रि 10 बजे सजेगी गजलों की महफिल और 10:30 पर सुरों के रंग के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। रात्रि 11 बजे समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 11:10 पर सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के गुलदस्ता कार्यक्रम को हमने सजाया है लता मंगेशकर के गीतों से। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म बाजार का ये गीत, और अब सुनवा रहे हैं आपको हमारे गुलदस्ता कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना जानिसार अख्तर का लिखा ये गीत खयाम के धुन पर, फिल्म रजिया सुल्तान का लता मंगेशकर के स्वर में। श्रोताओं, हम आज आपको सुना रहे हैं आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में लता मंगेशकर के स्वर में गाए कुछ गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब इस अंतराल के बाद श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का। गीत संगीत था रविंद्र जैन का और इसे गाया था लता मंगेशकर ने। आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में गाए ये गीत। और अब अगला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर लता मंगेशकर का गाया। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं किसान भाई बहनों आप सभी अच्छे होंगे। जून माह की खेती, आज हम इस विषय पर जानकारी देंगे, साथ ही आनंद लेंगे हो लोकगीत का, सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता। तो किसान भाई बहनों, जून महीना खरीफ फसलों की बुआई का समय है। मानसून की पहली फुहार के बाद धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और मूंगफली जैसी प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। वहीं सब्जियों में भिंडी, लौकी और मिर्च की रोपाई की जाती है। मानसून के आगमन के साथ इन फसलों की बुआई सीधे खेतों में की जाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, अरहर और सूरजमुखी। किसान भाई बहनों, दलहन और तिलहन के रूप में अरहर और सूरजमुखी की बुआई भी जून के पहले पखवाड़े में की जाती है। धान की खेती यानी नर्सरी लगाने और खेतों की रोपाई का काम जून के मध्य से शुरू हो जाता है। कम समय में अच्छी पैदावार के लिए मक्का की बुआई के लिए बेहतरीन समय है। सोयाबीन मध्य और पश्चिम भारत में जून के अंतिम सप्ताह

0: जाने का खतरा बहुत कम होता है। लोबिया और मिर्च, लोबिया मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। इसके अलावा आप बैंगन और टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, अगर आप आम, अमरूद या नींबू का नया बाग लगाना चाहते हैं तो जून में इसके लिए गड्ढे खोदकर उनमें गोबर की खाद और नीम की खली भर दें। पौधों की बढ़वार के लिए यह समय खाद डालने का सबसे सही समय होता है। आप जब भी मौसम के हिसाब से जिस फसल की खेती कर रहे हों तो पहले बीज का उपचार कर लीजिए, उसके बाद बीज की रोपाई कीजिए। बीज लगाने से पूर्व आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सूखे की स्थिति आती है तो सिंचाई कर खेतों में नमी बनाए रखना चाहिए। खरपतवार निकालें और खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि भारी बारिश में फसल खराब ना हो। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी जून माह की खेती के बारे में।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: चेताने साई माई ते को लतार साई माई ते को लो

0: किसान भाई बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का सिनेमाई आल्डा और साथी के स्वरों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता, और आज हमारे भेंटवार्ता का विषय है टमाटर की खेती कब और कैसे करें, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं अनिकेत गो। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं अनिकेत गोप, जो कि आज हमें टमाटर की खेती कब और कैसे करनी चाहिए इस विषय पर जानकारी देंगे। तो अनिकेत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार।
1: जी आपको भी जोहार।
0: तो अनिकेत जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है?
1: जी आप टमाटर की नर्सरी तीनों मौसम में लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे कि गर्मी के मौसम में टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय फरवरी से अप्रैल महीना है, और बरसात में आप इसे 15 जुलाई से अगस्त महीने में लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और ठंड में लगाना चाहते हैं तो दिसंबर से जनवरी तक के महीना लगा सकते हैं।
0: अच्छा, तो टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं आप?
1: जी जब भी हमारे किसान भाई टमाटर की जो भी खेती करते हैं तो बीज को बोने से पहले नीम का तेल या गोमूत्र से उपचार के साथ साथ बुआई के 2 से 3 घंटे पहले बीजों को ट्राइकोड्रामा और राइजोबियम से भी उपचारित कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: आपके पास यह 4 विकल्प है बीज को उपचारित करने के लिए।
0: अच्छा,
1: और नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी में क्यारी लगभग 1 मीटर चौड़ी तथा 6 इंच होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: और अगर बड़े पैमाने पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हुई बना सकते
0: मतलब
1: हैं।
0: उठी हुई बना सकते हैं।
1: इससे क्या होगा कि नर्सरी में पानी जमा नहीं होगा,
0: अच्छा
1: वहीं निराई गुराई भी अच्छे से हो जाएगी।
0: अच्छा
1: बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई में आप बो दीजिए, फिर आप बुआई के बाद हल्की सी सिंचाई पर दीजिए।
0: अच्छा,
1: टमाटर के पौधे 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं,
0: अच्छा
1: तब आपको इसे खेत में बो देना चाहिए।
0: अच्छा
1: यदि आप आधा एकड़ में इसकी खेती करते हैं 50 ग्राम बीज का जरूरत पड़ेगा,
0: अच्छा
1: और 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं तो 100 ग्राम बीज काफ़ी है।
0: अच्छा
1: कम जमीन में इसकी खेती करते हैं तो 50 ग्राम से भी कम बीज का जरूरत होगा।
0: अच्छा तो कौन से किस्म का मतलब जो बीज है ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा किस्म अच्छा होता है टमाटर की खेती के लिए?
1: हम हमेशा संकर किस्म का बीज इस्तेमाल करते हैं टमाटर खेती के लिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि संकर किस्म से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल,
1: अभी तो आप देख ही रहे हैं कि नर्सरी लगाए हुए अभी ये पौधे को खेत में लगाना बाकी है।
0: अच्छा
1: जब इसमें फल लगेंगे तब आप समय आइएगा और देखिएगा कि टमाटर पौधों में कितने आते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखिए, यह जो टमाटर की संकर किस्म है ना, ये हर प्रकार के मिट्टी में हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और आप किसी किसी किसान भाइयों के खेतों में जाकर पूछेगा तो वो भी संकर किस्म को ही आप काफ़ी अच्छा किस्म बताएंगे।
0: अच्छा, यानी कि संकर किस्म सबसे अच्छा है।
1: जी
0: जी अच्छा, तो अब खेती का तरीका भी आप हमें बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल। खेत को सबसे पहले 3 से 4 बार देसी हल से जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल या देसी हल से कर लीजिए।
0: जी,
1: फिर उसके बाद मिट्टी को समतल करके जरूरत के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर फिर से अच्छे से जुताई कर लीजिए, और जो भी मिट्टी में बचे कुछ घास है उनको भी हटा दीजिए।
0: अच्छा,
1: फिर नर्सरी से पौधों को सावधानी से उखाड़ कर उनके जड़ों को पानी में धोकर खेतों पर लगा दें।
0: अच्छा,
1: टमाटर के पौधों को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें।
0: अच्छा,
1: पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रख सकते हैं।
0: अच्छा,
1: टमाटर के बेड से बेड की दूरी अगर आप 5 फीट रखते हैं तो इससे क्या होगा कि सूर्य का रोशनी पूरे

0: पर अच्छा से फैले, क्योंकि
1: अच्छा
0: जब आपके टमाटर के पौधे का विकास हो जाता है
1: हम्म,
0: तो अगर आप दूरी कम रखेंगे तो टमाटर के पौधों को निचली सतह पर सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा,
1: अच्छा
0: जिसकी वजह से टमाटर के निचली सतह पर फंगस लगने लगते हैं। तो आप नहीं चाहते कि हमारे टमाटर के फसलों पर फंगस जनित रोग ना लगे, तो आप टमाटर के पौधे के बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें।
1: अच्छा
0: इसके अलावा आप इनसे बचने के लिए मल्चिंग पेपर और टपक सिंचाई विधि का भी उपयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: मल्चिंग पेपर के उपयोग से टमाटर के पौधों के फल खराब नहीं होंगे होंगे क्योंकि वह जमीन से नहीं टकराएंगे। साथ ही खरपतवार कंट्रोल में रहेगा।
1: जी बिल्कुल
0: खरपतवार कंट्रोल में रहने से खेत पर कीट का आक्रमण कम होगा।
1: जी
0: कीट कम होंगे तो आसानी से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और भी एक उपाय कर सकते हैं
1: जी
0: खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, कि आप फसल चक्र को अपना सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसको अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगते हैं।
1: अच्छा जी, तो हम टमाटर के साथ साथ और कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं?
0: जी, आप टमाटर की फसल के साथ में मिर्ची, प्याज, गाजर, धनिया और आप चाहें तो गेंदा का फूल भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा, तो अनिकेत जी, ये हमने जाना कि टमाटर की फसल के साथ साथ और कौन से फसल लगा सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि टमाटर की फसल के साथ साथ कौन सी फसल नहीं लगानी चाहिए?
0: जी, आपको फूलगोभी, मक्का, आलू और ब्रोकली टमाटर के फसल के साथ नहीं लगानी चाहिए।
1: अच्छा अनिकेत जी, नर्सरी तैयारी का आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि नर्सरी तैयार आप जब कर लेते हैं तो उसके बाद किस तरह से पौधों की देखभाल करते हैं?
0: जी, जब आपने बीज बो दिया है तो उसके बाद जो पंक्तियाँ हमें बनाई है उसको मिट्टी और गोबर से ढक दीजिए।
1: यानी पंक्तियां को, जो हमने पंक्तियां बनाई है।
0: जी,
1: अच्छा
0: फिर बिजाई के बाद क्यारी को सूखा घास चाहे पुआल से ढक दीजिए।
1: अच्छा
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखें कि उस मिट्टी में नमी बना रहे। क्यारी में कभी आप घनी बिजाई ना करें,
1: अच्छा
0: एक या दो बीज डालें, क्योंकि पौधों में कमर तोड़ रोग होता है, वो घनी बिजाई करने से लग सकते हैं या हो सकते हैं।
1: अच्छा। अनिकेत जी, आपने अभी बताया कि घनी बिजाई अगर हम करते हैं तो यह कमर तोड़ रोग लगने का डर होता है, तो यह रोग क्या है और इससे पौधे को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: जी, यह रोग फफूंद के कारण होता है
1: अच्छा
0: और यह मिट्टी में ही पनप जाता है, तो मिट्टी जांच भी जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: इस रोग के चलते काफ़ी नुकसान होता है हम किसानों को
1: जी
0: इस बीमारी से, या यूं कहें इस रोग से पौधे की कमर सड़कर टूट जाती है।
1: अच्छा, तो इसका उपचार क्या है?
0: इसके उपचार के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से सींच दीजिए।
1: अच्छा, इस घोल को पूरा पौधे पे स्प्रे करना है।
0: जी,
1: अच्छा, आप इन पौधों को यूं ही मिट्टी के संपर्क में छोड़ देते हैं या इनको किसी चीज से मतलब सहारा देते हैं?
0: सहारा तो टमाटर की हर किस्म में देना चाहिए
1: बिल्कुल
0: ताकि फल मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर सड़ने वाले रोगों से ग्रसित ना हो जाए।
1: जी,
0: टमाटर के पौधों के मुख्य तना की होता है।
1: यानी कि तना ही मतलब इन पौधों का
0: जी
1: मुख्य, यानी कि तना मुख्य है पौधों का।
0: इनमें निकलने वाली अन्य शाखाओं को समय समय पर निकलने रहना चाहिए।
1: जी, निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको इनको सहारा देने के लिए तने की सतह से पौधों को सुतली या रस्सी से सहारा दीजिए।
1: अच्छा
0: आप चाहे तो 5 से 6 फीट की दूरी पर बांस गाड़ दीजिए, फिर उनमें भी एक रस्सी दोनों बांसों के बीच बांध दीजिए।
1: अच्छा
0: फिर टमाटर के पौधे से रस्सी को बांधते हुए बांस से जुड़ी हुई रस्सी से बांध दीजिए। इससे पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और फल भी।
1: बिल्कुल। तुड़ाई के लायक कब तक हो जाते हैं टमाटर?
0: जब आप पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद 50 से 55 दिन बाद फल आ जाते हैं।
1: अच्छा
0: पूरी तरह से 60 दिन में लाल टमाटर काटने की स्थिति हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: फिर आप इन्हें बाजार तक भेज सकते हैं या अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा ठीक है जी, आज बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके,
0: जी, मुझे भी।
1: और आज आपने हमें इतने विस्तार से टमाटर की खेती कब और कैसे करनी चाहिए इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी।

तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे उड़िया लोकगीत दिलीप निषाद और साथी के स्वरों में। और इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। और अब सुनते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार कुछ पलों के बाद।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल देर रात बिजली गुल रहने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में डीजल की कमी के कारण जनरेटर नहीं चल सका, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज व सुई देनी पड़ी। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। लोहरदगा में झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और डीडीसी को ज्ञापन सौंपकर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद से समाधान की अपील की है। मनरेगा कर्मी पे आधारित मानदेय और स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर पिछले 76 दिनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तरी कोयला परियोजना के अवस्थापित परिवार के पुनर्वास कार्य में तेजी लाई गई है। अपर समाहर्ता विकास कुमार राय ने मंडल डैम निर्माण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थलों पर बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भावुनिया ने आज मोहनपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और खराब चापाकलों की मरम्मत में तेजी लाने को कहा। हजारीबाग के कटकम दाग में दो नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर दोनों की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चैबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो आंकड़ा।

नहीं, आकाशवाणी रिया छा केंद्र तना एफ एम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ श्रवण आई में तना ना आयु पेंग छः बजाय ना ते 2 मिनट होबा सिखायना कार्यक्रम हो अकड़ा आयु मिचे बिन लगे नलिंग बेटा जो खने महेंद्र गोई जाओ दिन लिखा गे एस पुरे लिंग सगमागोतरे इनको मिन्यान मिन्यान तिलिंग आयु मिचे बिना आयुम लगे एफ एम रेडियो जा पारगे टाइम पर

0: namcharat na eh ente kuyon do ading usi ko mania he endo kuyon ko do ware ko taine ente mandi utu ko wadur ko samana ko mania he iya endo na ado aben ware tai tai te hon ko ben leltana leltan leltan te aben na ware a ci aben alagi jawrat urat ya alagi jan pai ti ko ben pai ti betna endo
1: iya
0: ho endo nen tailor pai ti do chilkade bene tokra
1: Nina ayar dinde sumaya tege nakotolin party kade ekto ayar pa balasaka leno ordo sabin likan duk taklim kuju emente ako alinge ayar te tiar taikina uru taikina ukon musingro jana jitana dorkar ghati bari mina ardo hunar ko tayo ordo menti ako endo alinge dinde tege nako rasa taikina ekto ichuko taikina ani septe rasa kulo etio hunar eto enaling eto kina
0: ente puyon ko do kako eton taikina ना चिली के तो बंद भरोसा के
1: अनिना आयर तो संस्था एक तो चलाव लेती कि ना हाथरो जैसे ओल पड़ा बागिया कट को मैंने का साबिन एंड सरकार लाभ में तय कि ना इधर ने संस्था है तालिंग पड़ाव किन्तु लिंग लाभ लिंग उठे गुड़ा
0: किमें देंगे अपन ट्रेनिंग के ना
1: संस्था पार अलिंग तीन महीने लिंग तो किन्तु कि ना
0: या
1: नेत अंडो ओ जुका तीर पानी है मनम फिर यो कलिंग मिनके तेने तो चेवासर अंडो गलिंग तो किन्तु कि ना तीन महीने रिया
0: अच्छा इन दो संस्था पर दो पैसा लगाओ ते किना
1: का पैसा नमोते किन पाए थे
0: पैसा नमोते
1: ये तो तो ते किना बाकी पैसा नमोते किना सर्टिफिकेट को नमें ते किना
0: ये अच्छा इन आते आपन अपन ता तन करते बने तो करें इन ता दो पैसा में तन ते किना
1: इन ता तो एम के ते किना बस एक बार के जमाने ते किना 1300
0: टका अच्छा हां तो इसु दिन आया रे का जी
1: इसु दिन आया रे का जी
0: अच्छा ठीक है इन दो ना दो इन ता अरे तो केन दो बन चीना चीना बने तो कदा
1: अब कोई हो उनको जितना जो भी सबन को सिलाई है जाके साया साड़ी में लेगा
0: या
1: yeah. इंदो इनको मिला
0: इंदो सूट को ऐसे किस्म किस्म को तो सिंगे ना है
1: या
0: इंदो इना को दो
1: इना को ना आ ना आ जो हिसेब ते जो पोजीशन हिसेब तंते इना को इन लिंग तो इधर ही कर किया
0: या या
1: या इना को लिंग बाई इधर को तंग दिया
0: अच्छा इंदो ना तो कोई उनको इना को जितना भी को इन बाई को ते ओबा अच्छा एंड जुका को तो बाव एंड इना जुका तो चिल्के बने तो करा
1: इना साबिन इन ता आते के ए तो याना
0: अच्छा
1: ये होमोरे चिमेंग लीजे दूर करो साबिन ए को
0: ए तो आपको का
1: ये
0: अच्छा निना दो लीजे ए दो मैं आपको को आगू ये ची अबन बन किरिंगे को
1: जैसे सूट लिंग बाये कर दो ना आपको के को आगू लिया और ओ ब्लाउज लिंग बाये कर दो एंड रे उकोन लीजे दो लगा ओ अस्तर बु मेनिया एक टू मंडो डीजे नाम ओ आइना अस्तर बो मेनिया एंदो इना दो अलिंग लिंग करेंगे
0: अच्छा
1: नेते आको अली जे लिंग लगाओ को तिलिंग सिलाई को
0: सिलाई को कची एंदो अच्छा जामन ते लिजे आको को आगु इवन सिलाई को एंदो मिशम से गेट गेट गेट ला अरे ना खराब जन दो
1: खराब जन रे तो इना तना तो एन एन हिसाब ते के एतो मिना हिसाब ते के इना तो मैनेज हो रे ओवा
0: मैनेज हो रे ओवा
1: मैनेज हो रे ओवा
0: या का दो का कोई दो
1: इना तो अलिंग पे तिलिंग भर पाई
0: अच्छा
1: या
0: नानी का हो
1: হানি কা হবা
0: কা হবা
1: কা হবা
0: আচ্ছা
1: ইয়া নেনা করে প্রফিট মেনা মেন কিলো এতে কে পার্টি হবা
0: আচ্ছা
1: ইয়া
0: এন্ড মোসিং রে চিকেন অকন ড্রেস পুরে আঞ্জাবেন বাই দিয়ে
1: সুট কে শিকা হবা চি চি না সিলাই কে সিলাই হবা আর ওবু নেন জ্যাকেট কো ব্লাউজ কো মনে তে আরে তো এন্ড রে দো ইপেন তে হুক কো বটম কো লাগা এন্ড রে সময় জুকা লাগা হবা
0: এন্ড মোসিং তো কা শিকা হবা
1: শিকা মোসিং তিও
0: ইয়া
1: ইয়া
0: এন্ড মোসিং রে চিমিন তুম শিকা ইয়া
1: इनका अगर नलिया बु ड्यूटी तन को टाइम टेबल बु सबेरे तो मशीन ते एक टू कंप्लीट रिंगा हुआ जैसे सेट रे साड़ी उको ना पिको अगु ए ब्लाउज अगु ए पॉल्स लगाते अगु ए इना को सेट एक दिन रे सिखा हुआ
0: अच्छा
1: सूट रो साड़ी जैकेट रो
0: अच्छा इंदो एक सेट या गोनंग द चिमिन बने दिया
1: एक सेट रे ब्लाउज और साड़ी रे अलिंग इडी 500 रुपए
0: या
1: या अंडो सूट रे अलिंग इडी 300 रुपए
0: अबन आली जे लोते
1: कागे सूट रे तो आलिंग एली जितु का लगा सूट रे सब नकुवा
0: नकुवा का
1: या सुतेम आलिंग
0: ए या
1: या अंडो ब्लाउज रे तो लीजे आलिंग पॉल्स आलिंग ए अस्तर आलिंग ए
0: या या
1: ए या हुक आलिंग बटन आलिंग
0: इन द ब्लाउज ते अगोनंग दो
1: ब्लाउज रे अगोनंग दो 350 रुपए
0: 350 रुपए
1: 350 रुपए
0: अच्छा लीजे ओ अबन आमन द
1: लीजे वाले
0: दो 8 घंटा समय पे मैं दे दो अबन नाला दो काओ बो
1: हवा
0: तना तली हवा तना का
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा
1: या
0: कौन समय पूरे तो को भाई ईरी
1: अब ना तो हर सीजन रे नैन रे कोई घाटी बड़ी बनवा
0: अच्छा
1: मतलब घाटा तो बनवा
0: अगर
1: नैन अबे चिपन टाइम बन एमिया इमन अबे नाला आते ना
0: अच्छा
1: या इंदर ना तो अलिंग तो वो अधूरे को फैमिली को सबिन को विदेश के को तो जो पीछ रालिंग है 4 घंटा

0: घंटा सारे होता ना इन बीच डाली दली ना लाए तना
1: अच्छा अच्छा
0: एया
1: निना छिलके ते अब निना के बन रासा डाइटा तक बना ना
0: सुमाय को सारे होता निसे ताली नागली सनांगे ना
1: या
0: एया
1: ताके कुयन को ऐसो पुरे दो एन सुमाय सारे यन दो लिंग को ऐसो को आ करेंगे हे
0: एया
1: इन द पुरे नल्ला वादा दुल केर के होबो अबन छिलके ते बना जे
0: ಅಯ್ಯರ್ ಕೊರೆಗೆ ಇನ್ನಕ್ಕೂ ಕಾತೈ ಅಂತ ಇನ್ನಕ್ಕೂ ಯಾರ ಆಸೆ ತೊ ಕಾತೈನೆ
1: ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇನ್ನೋ ಟೀಕಿಯೆ ಅಬ ನೊಕ್ಕನ ಬನ್ನು ಹುನರ್ ಮೇನ ಇನಗೆ ಟೀಕಿ ಎಂದು ಒಲ್ಪಡಾವದ ಬನ್ನು ಚಿಮಿನ್ ಜುಕ ಬನ್ನು ಒಲ್ಪಡಾವ
0: ಒಲ್ಪಡಾವ ಅಲಿಂದು ಒಲ್ಪಡಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ತರಲಿ ನೆತೆನ್ ಪದ ಅಲಿಂದು ಕಲಿಗೆ ಏನಾ
1: ಅಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸಿನ ಕನಕ ದೋ ಚಿಲೈ ದೋ ಕೈತೋ ಇಕಿ ಕಾಲಿ
0: ನ ಸೋಬೆನ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಕಾಜಿತೆನೆ
1: ಹಾ
0: ಅಬನ ರಾಸ ತೈ ಒರದ ಸೋಬೆನ್ ಕೊರಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೆನೆ ನಿನಾ
1: अच्छा
0: हपनुम ए जैसे चे काकीरो मारो ननर अगर हुनर में ना रे तो मतलब हुनर सनंग रे दो बेन
1: या या
0: या सनंग रे दो बेन सबन का लगे पार्टी में ना
1: या एंड अब ना दुकान तो चिकन चिकन अपन तो में ना ना
0: ना तो इनका अब दूर करो उतने से नो ते अभी कोई उनको सामान को के में ना
1: या
0: उड़िंग ते अमरंग ते सबन लेकर ना में लेकर
1: या
0: या ने तांड ओलिंग सेले येले सेले को तने
1: एंड पूंजी तो चिमन लगा हम को रे
0: ना सिलाई तैयार
1: है या
0: सिलाई तैयार अबेन मशीन के बिन किरिंगिया पूंजी दो बस इना के मशीन अले सो यार नो तेलिंग किरिंग ला 5000 के तेलिंग किरिंग लेते कि ना
1: या
0: ना तो बिटा कन गया अन 10000 बीते रे ना 7,500 नो रमिना
1: एंड मिडो सिलाई सेंटर चे कोन ता दुकान चलावे लगी दो मी मशीन ते के चलाओ छे चिकन चिकन मशीन किरिंग तबो
0: लंसिन तो दूर करा एक तो सिलाई ते दूर करा
1: या
0: एक तो पिको ते जरूरी है
1: बारी
0: बारी
1: अच्छा एंदो पिको का दान रे तो
0: पिको तो एंद्र के मिना सिलाई रे के ना बस इना चिल के सिलाई इनका के सिलाई इना
1: इनका के
0: इनका के
1: का कटी ने दा
0: का के
1: मी चंडू रे कम से कम चिमिन में ना ले एंद्र तो
0: सिलाई तें ते अल अगुलिंग तें ते अल कमेन के ते का के ना दिन चाचा ते अरो को अगुलिंग जो काले ढीले तंद ना जो का सिलाई रे से हो रे लेबन में ते आ हो जुए एंदो इना रे अलग ते चार्ज हो जुए ₹40 ₹50 लेंगे दी ना बाहर इनकम मो तलिंग हुजु तने मशीन रे दुप केन तिया दो
1: या
0: अन ओ लिंग बाई गुटा को तंती आओ इनाओ अलग ते
1: का
0: एया
1: एसो बणी न दाबेन नेलका बु ए अपनम करियो ची कुयन को अबेन अपनी आयर पा दो नलाय ती अलग चिकन संदेश बेन मकवा
0: अलिंग नगली एमलिंग रासा संदेश तो अब मई हन को कुई हन को रिया ने निना एतो कानो अते बहुत जरूरी तने अंडो अबेन एतन त्या के सु जरूरी तो जरूरी बही किने ना सबेन को मई हन को रिया अयर पा जनरेशन रे अपु लेलके ते ना बरसिंग तो अदान बु बला सकन रे जा इमिन बु पे अन रो बु पाटे अदान रो बु सबेन लिका सनंग सपनंग का बई हुआ एंदो मंडोरो हसुतु को बो हसुरो लाय हसुरो मिना गेन करो बो हसुतु को एंदो आ एक अनला तंद तो अनचिन एंचि के मेंती अको उड़ो को आलोचना बायो कतबो सबिन तेगेबो अपासुलेबो जुड़ी गति केन ओरे दबो सबिन को देपिंग गति एसु जरूरी मिना एंदो सामा को के आलो कबो ताई ओके ने ना को एतो कने ते अबु बड़ी खुशहाली जीवन बो बीते से हम बुड़ी रे तपम रूप को आलो का ताई ओके बाई ओके डोडी ने कोई हन करो बो बला सका ने देना को ओन लाका हुबा ओका एंदो मार बो एतो रासा और सबिन बो एतो उनका ने ना अंडो ने ना रे एसु सुविधा पार्टी मिना जाय ए गुलाम रे काबू तेने जाय ए रंग ए परंका के अबु सनन के बो पार्टी रे का सनन के बो काबू पार्टी
1: दायुम तेन को पाए तो सबन को जोहार के मरा
0: हां मर सबन को अभी ना जो
2: ना बन आयुम तेन ते के ना अब जो सामा के नाला नो करी बनो रियो अकिन निमिन 3 घंटा समय जो को ना बचाओ तना हन को तैयार के ते अंडो अकिन बेला ताड़ी ची मांडे उतो इसिंग के ते इन बीच रे के नको के नेतो याना अंडो ಎನ್ನೈ ತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನೆ ಜೋ ವಾದುವೆರ್ ಎಸು ಬುಗಿಲ್ ಕತ್ತಕಿನ್ ಚಲಾಯ್ತನ ಅಂಡ ಎನ್ಲಿ ಕತ್ತಗೆ ಮರ್ ಅಬು ನೆಲಕಬು ಉಡುಯಿಕೆ ಅಂಡ ಎನ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಅಬು ಜೋ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಕಬು ಅಪನಾಯ್ತೆ ಅಬು ಉಡುಂಚೆ ನಿಯಾ ಬೆಪ್ಟಾ ಜಗರ್ಚನಂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಿಯ ತುಂಡು ಪೇರೆ ಮಿಂಜನ್ ಆಂದಿದುರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಮಿಚೆವೆನ್.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो आंकड़ा। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोरमा। और आज के कार्यक्रम मनोरमा में आपके साथ हैं बासंती।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, आज हम कार्यक्रम में चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए माता पिता को सुरक्षित और गारंटीकृत निवेश का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खुलवा सकते हैं। प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर ही यह खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में जमा राशि सीमा है 1 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें निवेश और मैच्योरिटी अवधि है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक ही पैसे जमा करने होते हैं, जबकि यह योजना 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होती है। इसमें निवेश, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही 1.5 लाख तक के निवेश पर आयकर अधिनियम द्वारा इसमें छूट भी मिलती है। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसकी उच्च शिक्षा या शादी के खर्च के लिए जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। बहनों, यदि आप भी अपनी बच्ची के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं तो अपने

0: अनुशासन सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकन परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेंगे आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आरकी थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
5: तुम लोग बुरन सिंह तमसोए अनिता तमसोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम में रियल तपाम में रियल वाह बेटा मिटा
6: आया न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा आया हूँ दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ीने बागिया तो कि ये दोनों से यार सी कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चला हो तमे दूर रन गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी आज जा हुरा रे मिने हीरो जिता हुरा रे मिने हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा नाम लक्की कुमार झा है, मैं विषय हिंदी की शिक्षिका हूँ।
0: श्रोताओं, आज हम मैडम लकी कुमारी झा से बातें करेंगे कि वे अपना काम और घर दोनों एक साथ कैसे मैनेज करती हैं, यानी नारी की दोहरी भूमिका पर आज हम मैडम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपके लिए ये है कि आप हमें ये बताइए कि नारी की दोहरी भूमिका का अर्थ क्या है।
1: जी,

0: जैसे कि नारी की दोहरी भूमिका का अर्थ है घर परिवार को संभालते हुए साथ साथ घर से बाहर निकलना, जॉब बिजनेस करना, ताकि अपने परिवार का वह भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सके। आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, वह डॉक्टर, शिक्षिका तथा इंजीनियर, लॉयर, इसके अलावा एक बिजनेस वूमन बनकर वह बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। इस तरह हम दोहरी नागरिकता के अर्थ को समझेंगे।
1: यानी कि मैडम आप बोलना चाह रही हैं कि महिलाएं अपने पैशन को फॉलो करते हुए, जैसे उन्हें भी बाहर निकलना है, काम करना है, वो भी कमाना चाहती हैं, इन चीजों को साथ लेकर अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, उसे आप दोहरी भूमिका का नाम दे रही हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा तो मैडम अब आप ये बताइए कि समाज में नारी की क्या भूमिका है, मतलब आपके हिसाब से महिलाएं क्या रोल प्ले करती हैं समाज में।
0: जी, जैसे महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं। महिलाओं की स्थिति सुदृढ़, सम्मानजनक एवं उन्नत समृद्ध होने पर समाज को प्रगति पथ पर अग्रसर भी वह करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अभी आज के समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो इस प्रकार हम समझेंगे नारी में।
1: जी हाँ मैडम, आज के समय में महिलाएं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है।
0: जी,
1: ये बात तो आज हम सभी मानते हैं। तो क्या आप बताएंगी कि वर्तमान समय में महिलाएं क्या आत्मनिर्भर हैं? क्या आप ऐसा मानती हैं कि वे आत्मनिर्भर हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल। आज कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: जी बिल्कुल।
0: और वे आर्थिक, मानसिक तौर पर और अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है।
1: जी।
0: और अगर वह कुछ करती भी है तो अपने लिए करती, अपने परिवार के लिए करती है।
1: हाँ जी।
0: तो उनके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
1: तो मैडम कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याएं होती है? जैसा कि आप भी काम कर रही हैं, साथ में आप घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो किस तरीके की परेशानियां आप अपने जीवन में फेस कर रही हैं?
0: जैसे कि मैम, कामकाजी महिलाओं की परेशानी तो है, भले आज महिलाएं अपने शौक के लिए करें, अपने इच्छा के लिए करें, कुछ अर्जन करने के लिए करें, लेकिन परेशानी तो है, क्योंकि एक तरफ महिला क्या है, माता है, पत्नी है, किसी की बहू है, सभी को लेकर चलना पड़ता है।
1: जी,
0: सभी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने पड़ते हैं, घर के भी कार्य करना है और आपको कार्यालय के भी कार्य को संभालना है। तो उस समय कभी कभी ऐसी स्थिति आती है मैम कि जैसे लगता है कि कुछ पीछे छूट रहा है, कहीं बच्चे की देखभाल, कहीं पति का बढ़िया से देखभाल नहीं हो पा रहा है, कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उन्हें भी कैसे हम लोग संभालें, यह भी देखते हुए सब कार्य को हम लोग कर भी लेते हैं। और यह ईश्वर की असीम कृपा है जो नारी में एक शक्ति प्रदान की है, जिसे हम लोग कहते हैं धैर्य। इसके बल पे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और नारी आगे भी जाएंगी।
1: अब मैडम आप ये बताइए कि महिलाओं का विकास कैसे हो सकता है?
0: जैसे कि मनीषा जी आप देख रही हैं कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी, अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना होगा, तथा लड़कियों को भी लड़कों से वो कम ना समझे, उन्हें भी आगे बढ़ाना होगा। जैसे आजकल अवसर प्रदान किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाए।
1: जी
0: बिल्कुल, भ्रूण हत्या पर रोक लगाए, उसमें भी अगर कन्या हुई तो उसे क्या किया जाता है मैम, आप जानती हैं मनीषा जी, कि उन्हें भी भ्रूण हत्या के दौरान लड़कियों को ही।
1: जी ये तो अभी सरकार की तरफ से जो भ्रूण के जेंडर का पता चलता था वो तो अभी सरकार ने बैन कर दिया है।
0: जी,
1: लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है कि आज भी अधिकतर घर ऐसे हैं जहां पे लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता।
0: जी बिल्कुल, ये तो समस्या है मनीषा जी, लेकिन आगे देखिए कि अभी भी सरकार अब अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, जैसे
1: जी
0: लड़की बढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, ये सब देखते हुए महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
1: मतलब सरकार का पूरा सहयोग है
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल
1: लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बनाना,
1: कई जगह तो सरकार ने बच्चियों को अलग से उनके अकाउंट में पैसे देने का
0: जी
1: भी
0: जी
1: इंतजाम
0: बिल्कुल
1: किया है,
0: बिल्कुल,
1: तो उनकी पढ़ाई लिखाई का भी सरकार बहुत खास ध्यान
0: हाँ,
1: रखती
0: ये
1: है।
0: सरकार की महत्वपूर्ण योगदान है ये।
1: लकी मैडम, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समाज बदल तो रहा है, बहुत हद तक परिवर्तन आया है और बहुत
0: जी
1: जगह महिलाओं को उनके हक को दिया भी जा रहा है,
0: जी जी
1: लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा समय नहीं आया है जहां पे महिलाएं और पुरुष बिल्कुल बराबर हैं। तो समाज को बदलने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
0: जैसे कि महिलाएं परिवार को आधार प्रदान करती हैं,
1: जी
0: वे समाज की रीढ़ है,
1: हाँ
0: रीढ़।
1: जी
0: जिस देश की महिलाएं जितनी शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, और वह देश उतना ही उन्नत होगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। इस तरह महिलाएं अपनी योगदान से भारत, अपने देश को आगे बढ़ा सकती हैं।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन
0: जी,
1: जब एक महिला
0: महिला नहीं
1: पढ़ती है
0: करती
1: तो
0: है,
1: पूरा परिवार
0: पूरा
1: शिक्षित
0: परिवार
1: होता है।
0: शिक्षित होता है, पूरा गांव शिक्षित होता
1: हाँ
0: है।
1: जी बिल्कुल। तो लखी जी, अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण क्या है?
0: इसका अर्थ है कि महिला को अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार इतना सशक्त बना देती है कि वह व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर अपने फैसले लेने में वह सक्षम होती हैं, और किसी भी कार्य को करने में वह आत्मनिर्भर होती हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो अपने खुद अपनी जिंदगी से जुड़े सारे फैसले खुद ले
0: खुद कर
1: सकें,
0: सके। जी
1: अपना अच्छा बुरा क्या है वो तय कर सकें,
0: जी
1: सोच सकें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और साथ ही अपने साथ साथ अपने देश के विकास में भी अपना योगदान कर
0: योगदान दे।
1: सकें।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो लखी जी, अब चलते चलते आप ये बताइए कि आपके विचार से आज की नारी को आप सबला कहेंगी या अबला?
0: नहीं मैम, जैसे कि आज हम नारी को सबला ही कहेंगे, क्योंकि वह आत्मनिर्भर हो रही है,
1: जी
0: आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, चाहे वह इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि पायलट हो, लोको पायलट हो, यहाँ तक कि आजकल औरतें, महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसलिए हम महिलाओं को सबला कहेंगे, ना कि अबला।
1: जी अबला नारी बहुत पीछे छूट
0: जी
1: गई,
0: जी जी
1: अब
0: बिल्कुल,
1: नारी अपनी जिंदगी में बिल्कुल सबला है, क्योंकि आज वो कहीं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं
0: नहीं
1: है,
0: नहीं बिल्कुल
1: बल्कि
0: नहीं,
1: आज पुरुषों से बढ़ चढ़कर वो हर फील्ड में अपना
0: हाँ
1: नाम रोशन कर रही है,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: कुछ भी नहीं बचा
0: नहीं
1: जिसमें आप नारी की प्रतिभागिता नहीं
0: नहीं
1: देखेंगे।
0: देखते हैं,
1: तो इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने लकी जी कि आज की नारी अबला तो बिल्कुल नहीं है,
0: नहीं है,
1: वो
0: नहीं है
1: है तो बिल्कुल सबला।
0: जी बिल्कुल।
2: अंत में मैं कविता के कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। गर्व है मुझे, मैं नारी हूं, गर्व है मुझे, मैं नारी हूं, अकेले ही सब पे भारी हूं, तोड़ कर हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाग बिछा लो बंदी से, चाहे लाग बिछा लो बंदी से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूं, अकेले ही सब पे भारी हूं, हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूं। धन्यवाद।
1: लकी जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना समय निकाला और नारी की दोहरी भूमिका पर इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा
0: धन्यवाद,
1: करते हैं कि आप अपने घर और अपने काम दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे।
0: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।
3: से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को
4: बहनों, अभी आप भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रही थी नारी की दोहरी भूमिका विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी लकी कुमारी झा और उनसे बातचीत कर रही थी मनीषा सिन्हा। इस जानकारी के बाद आइए अब हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था आशा भोंसले ने। तो बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनोरमा। आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है और अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालूघाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह गौरव मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए 300 बालूघाटों को जल्द चालू करने और नीलाम कोल ब्लॉकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राज्य में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने, नए खदानों के ऑक्शन में तेजी लाने और जेएसएमडीसी और जेएमईसीएल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
1: जब जब कांग्रेस सपोर्ट से जेएमएम की सरकार बनी तब तक बालू गायब बालू सोना बन गया।
2: दुर्भाग्य है
1: क्यों कभी बंबई के व्यापारी को बेच दिया, कभी किसी को दे दिया और कमीशन फिक्स है। इस जो कमीशन खोरी बालू की चल रही है इसमें लाखों नहीं रोजाना करोड़ों रुपए कमीशन में जाते हैं। जांच होनी चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कोष विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारतीय एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विमानन क्षेत्र से जुड़े करीब 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
3: 6 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासन

0: कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए पार्टी को उस पर गर्व है। पंडित नेहरू ने वहां पर भाखड़ा नंगा डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे और ललित कला अकादमी बनाई थी, तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSUs थे वो सारे के सारे बनाए थे।
1: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा सहित राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया है। 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य पंचायत स्तर पर मिट्टी की जांच को बढ़ावा देना और फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। गढ़वा के डुमरो और नारायणपुर गांवों में आयोजित सत्र के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की जलधारण क्षमता और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजोला, नीलहरित शैवाल और PSB के उपयोग की महत्वपूर्ण सलाह दी। चक्रधरपुर मंडल के DRM तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांड्रा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। DRM ने बताया कि कांड्रा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है।
2: लंबे होंगे, वेटिंग हॉल जो है वो ठीक होंगे, टॉयलेट एक्वाटिक होगा, पैसेंजर की अम्यूनिटी बनेगी, तो वही चीज देखने आए थे कि वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी आ जाए, पार्किंग भी हो जाए और प्लेटफॉर्म में लिफ्ट भी लग जाए, पैसेंजर का वेटिंग हॉल भी अच्छा हो जाए, वही सब चीज देखने के लिए।
1: धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित ANM, स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
3: 100 प्लस और बहाली होना है, 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, तो उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में NHM में बहाली होनी है और अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच वाली होंगे। कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे।
1: विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में करीब 50 साइकिल चालकों ने 35 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए साइकिल चालकों ने स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और साइकिल अनुकूल शहर निर्माण का संदेश दिया। उधर सिमडेगा में भी मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पेट्रोल बचाने का है, जिसमें साइकिल चलाकर हम सब अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
4: आज विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यह बताया गया है कि हम लोगों को पेट्रोल की थोड़ी सी बचत करनी है, उसको लेकर के ये आयोजन भी काफी सराहनीय रहा। सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने बताया कि साइकिल का उपयोग यदि किया जाए तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी, साथ ही साथ सेहत का भी अच्छा फायदा मिल पाएगा।
1: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार हैट्रिक जमा

0: हुए 3 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के ही प्रेमचंद सोय ने भी 1 गोल कर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को
1: के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल क्लास लाइव्स थ्रू रिफॉर्म एंड वेलफेयर। Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
3: India has undergone significant economic, technological, and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion, and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand, and made their lives easier, fairer, and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
3: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
4: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, we're almost twice the population of the United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
3: Absolutely. Mr. Tandon.
5: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein, usme jo madhyam varg ki arthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. टैक्स में छूट, GST का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। GST, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है PM आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, PM स्वनिधि योजनाओं की बात करें। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
3: जैसे भी शरद जी ने
5: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं।

0: तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arva, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास, नल, यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल।
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In
2: fact,
1: actually.
2: We did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar,
1: yes.
2: you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean people have opened their arms and embraced it, usse puri ki puri arthvyavastha pe farak pad gaya hai.
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म

0: टिकड़ी है, इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है। सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है। ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है।
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: थी, डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन। And there are so many learnings which are happening. A Prime Minister recently made an appeal which said कि आप online classes लीजिए। कैसे ये COVID में हम करते, पढ़ाई की लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये connectivity नहीं होती। बच्चों का कोई नुकसान COVID में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप online classes लीजिए। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
1: जो पिछले 12 सालों में काम
2: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
0: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होगा।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो

0: कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
0: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त LPG मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी, अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड, दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को

0: बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है, और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था। पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की
1: जी
0: स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा ना, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
5: और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम बात करेंगे 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी इस विषय पर। श्रोताओं, भारत जैसे विशाल बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में जनसंचार के साधनों की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है। आज जब हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के युग में जी रहे हैं, तब भी एक ऐसा माध्यम जिसने लगभग एक शताब्दी तक करोड़ों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है और यह माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि यह भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोकतांत्रिक विकास की सशक्त सहभागी रही है। पिछले 90 वर्षों में इसने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से देश के कोने कोने में अपनी पहुंच बनाई है। इसकी आवाज ने स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक बदलावों और तकनीकी क्रांतियों को बहुत ही करीब से देखा और देशवासियों तक पहुंचाया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श को आत्मसात करते हुए आकाशवाणी ने जनसेवा को अपना मूल उद्देश्य बनाया। यही कारण है कि आज भी इसे देश के सबसे विश्वसनीय संचार माध्यमों में गिना जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1920 के दशक से प्रारंभ होता है। वर्ष 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी रेडियो क्लबों द्वारा प्रसारण की शुरुआत की गई। इसके बाद 1930 में भारत सरकार ने रेडियो सेवा का संचालन अपने हाथों में लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की। 8 जून 1936 को इस सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। यही दिन भारतीय रेडियो प्रसारण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को संस्कृत निष्ठ नाम आकाशवाणी प्रदान किया गया। आकाशवाणी शब्द का अर्थ है आकाश से आने वाले वाणी। यह नाम भारतीय संस्कृति और आधुनिक संचार तकनीक के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। आजादी के समय ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क मात्र 6 केंद्रों और 18 ट्रांसमीटरों तक ही सीमित था। वर्तमान में आकाशवाणी 231 केंद्रों, 303 चैनलों और 155 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ देश का सबसे बड़ा प्रसारक है। यह नेटवर्क आज देश के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 98% से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। विविधता को समेटे हुए आकाशवाणी द्वारा 23 भाषाओं, 189 बोलियों में सेवाएं प्रदान की जा रही है। आधुनिक दौर में DTH, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी पहुंच युवाओं तक भी मजबूत हुई है। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान रेडियो एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा। उस समय प्रसारण सुविधाएं बहुत ही सीमित थी, फिर भी रेडियो के माध्यम से समाचार और महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचते थे। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक मध्यरात्रि में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब करोड़ों भारतीयों ने

जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण रेडियो पर सुना। यह घटना आकाशवाणी इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी आकाशवाणी ने जन जागरण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं और कृषि विकास जैसी अनेक चुनौतियां थीं। आकाशवाणी ने इन चुनौतियों के समाधान में सहयोगी की भूमिका निभाई। रेडियो के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने जन सामान्य को रोगों की रोकथाम और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों और युवाओं को ज्ञान प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अन्य संचार साधन उपलब्ध नहीं थे, वहां आकाशवाणी विकास की आवाज बनकर पहुंची। भारत की सांस्कृतिक विविधता विश्व में अद्वितीय है। आकाशवाणी ने इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में अमूल्य योगदान दिया। शास्त्रीय संगीत, लोक कथाएं, कवि सम्मेलन, साहित्यिक चर्चाएं और नाट्य प्रस्तुतियां आकाशवाणी की पहचान बन गई। देश के अनेक प्रसिद्ध कलाकारों की पहली पहचान आकाशवाणी के मंच से ही मिली। संगीत प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा मंच बना जहां भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का संरक्षण और संवर्धन भी हुआ। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। आकाशवाणी ने इन भाषाओं को सम्मान और मंच प्रदान किया। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों ने अनेक कवियों, लेखकों और साहित्यकारों को लोकप्रिय बनाया। आकाशवाणी समाचार सेवा आज भी विश्वसनीयता का पर्याय मानी जाती है। देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। युद्ध, चुनाव, प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय संकटों के समय आकाशवाणी ने जनता तक प्रामाणिक और त्वरित जानकारी पहुंचाई। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां समाचार पत्र या अन्य माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं होते, वहां रेडियो आज भी सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान आकाशवाणी ने देशवासियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय भी रेडियो ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सरकारी दिशा निर्देशों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। भारत की बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। आकाशवाणी ने ग्रामीण भारत को विशेष प्राथमिकता दी। कृषि कार्यक्रम, मौसम की जानकारी, पशुपालन, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने में बहुत ही सहायता मिली। आकाशवाणी ने शिक्षा को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर भी प्रसारित कार्यक्रमों ने लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया। एक समय ऐसा था जब रेडियो परिवार के मनोरंजन का मुख्य साधन था। शाम होते ही लोग रेडियो के आसपास एकत्रित हो जाते थे। फिल्मी गीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, अनुरोध कार्यक्रम और विशेष प्रस्तुतियां श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। रेडियो न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज को संस्कार और संदेश भी दिए। 1957 में शुरू हुई विविध भारती सेवा ने मनोरंजन प्रसारण में एक नई क्रांति ला दी। जय माला, हवा महल, छाया गीत और फौजी भाइयों के लिए जैसे कार्यक्रम आज भी लोगों के स्मृतियों में बसे हुए हैं। लोकतंत्र में सूचना का महत्व अत्यंत ही अधिक होता है। आकाशवाणी

ने चुनावों, संसद की कार्यवाही, सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई। इससे नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का सेतु बनकर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत हुआ किया गया। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 30 अप्रैल 2023 को अपने 100 एपिसोड पूरे किए। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह कार्यक्रम समय के साथ जनसंवाद से आगे बढ़कर जन भागीदारी का एक सशक्त मंच बन गया। जनवरी 2015 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भागीदारी ने वैश्विक पहचान हासिल कर इस ऐतिहासिक एपिसोड के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, लोकल फॉर वोकल, आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। मन की बात कार्यक्रम आज भारत का पहला विजुअली एनरिच्ड रेडियो प्रोग्राम बन चुका है। समय के साथ आकाशवाणी ने स्वयं को आधुनिक बनाया। एफएम चैनलों, डिजिटल रेडियो, मोबाइल एप्स और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से आकाशवाणी ने नई पीढ़ी तक अपनी पहचान बनाई। आज श्रोता दुनिया के किसी भी कोने से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हैं। कई लोगों का मानना था कि इंटरनेट के आगमन से रेडियो का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेडियो ने डिजिटल तकनीक को अपनाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। आज पॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्स के माध्यम से आकाशवाणी नए श्रोताओं तक पहुंच रही है। 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। देश के लगभग हर क्षेत्र तक पहुंचना, अनेक भारतीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाना, विश्वसनीय समाचार सेवा प्रदान करना, संस्कृति और साहित्य का संरक्षण करना, शिक्षा और जन जागरण में योगदान देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाए रखना, डिजिटल युग में सफल रूपांतरण करना। तो श्रोताओं, आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा केवल एक प्रसारण संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के विकास की भी कहानी है। इसने देश की धड़कनों को अपनी आवाज़ दी, संस्कृति को संरक्षित किया, लोकतंत्र को मजबूत बनाया और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आकाशवाणी वास्तव में 90 वर्षों का वह हमसफर है जिसने भारत की यात्रा को देखा, समझा और अपनी आवाज़ के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाया। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं आप सबों का फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा। तो कार्यक्रम रजनीगंधा में पहला खत हमने लिया है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया का। और एक खत है कुचाई इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुद्री लोवादा, सुरती सोमनाथ, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा, बिंजना लोवादा। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शंकर महादेवन और साथियों को, फिल्म का नाम था लक्ष्य। और अब कार्यक्रम रजनीगंधा में अगला खत लिखने वाले हैं न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीस और मुन्ना, खरसवां से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और भाई एस देहरी। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म फर्ज का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, और कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष और आनंद। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं हमारे लोफर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म लोफर का ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा का अगला खत हमने लिया है पोंडाकाटा से। खत लिखने वाले हैं नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी, संजय सोरेन, नंदनी, संजीव महली, विजय बेसरा और एनएस महली। और एक खत हमें मिला है खमहरिया छत्तीसगढ़ से, साबित खान, सत्या साहू, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और धर्मेंद्र प्रजापति का। इन सबों के फरमाइश पर आइए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झील के उस पार का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर किशोर कुमार का गाया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा अलगे नेहर में बोले नौकन परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: मोर नाम मंगलोरा एको गांव बड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
6: नाम है रंगबला देवी का बारे हत्तो का तो घर आए ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है।
7: नितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुरे में ना यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिटा
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं

0: उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए हमें अगला खत मिला है बड़ा निमड़ी चायबासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार का। और वसुंधरा कॉलोनी से भोला राम मधुर बड़ी बाजार चायबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन का। सुनवा रहे हैं फिल्म कबीर सिंह का ये गीत अरिजीत सिंह का गाया।

और अब कार्यक्रम रजनीगंधा में हमें अगला खत मिला है महोलडिया सोनवा से। नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनुतनु, नंदू महतो, सोनवा से ही गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो का। और अमला टोला चायवासा से हैं गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। इन सबों के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत लता मंगेशकर का गाया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोर का ये गीत महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाजों में। और इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। और अब श्रोताओं, आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने

0: कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी और इंडोनेशिया ओपन फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों

0: में 3,000 रूपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12,00,000 रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जल्दी से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
7: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Rituvrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly.

0: आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा? तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जब मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24/7 काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा कर

0: जी
1: तो
0: बिल्कुल,
1: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
1: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पैदी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, और उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
0: जी
1: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
0: जी बिल्कुल, डॉक्टर डबास आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
1: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको के टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी किसान क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी
2: हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें

0: किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जाकर, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो कई फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी की पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती
1: बिल्कुल
0: है,
1: डबास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है, हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें, एक अगर जनरली हम बात करें इसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए

0: कि एलिनो कंडीशंस यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में एक बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम में बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है किसान को अच्छी फसल मिलती है किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है आगे बढ़ना है अपने सपने देखता है तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसे और भी अच्छा करने की संभावना है क्योंकि किसान हमारा सक्षम है हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं किसान उत्पादक संगठन बने हैं वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले और ये खाली हमारी वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं फल हैं फूल हैं क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है यूरोप में ये चल रहा है दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, वातावरण में एटमॉस्फेयर में

0: जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। इसके वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहा है उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके
1: जी
0: पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है नाटक मन का दरवाजा।

आकाशवाणी का ये चायवासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं गजलों का कार्यक्रम। तो गजलों की महफिल सज चुकी है, सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गजलें।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और श्रोताओं, रात के इस कार्यक्रम में सुरों के रंग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, चांदनी बिखरी है हवाओं में, मधुरता घुली हुई है और ऐसे में पुराने फिल्मी गीतों की यादें हमारे मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो आइए सुरों के रंग की इस यात्रा का शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जहां रात की खामोशी में जब चांद अपनी चांदनी धरती पर बिखेरता है तब मन अनायास ही किसी मधुर स्मृति में खो जाता है। तो फिल्म दिले नादान का ये बेहद ही मधुर और रोमांटिक गीत सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

फिल्म साथी से। श्रोताओं, फिल्म साथी का यह बेहद ही खूबसूरत गीत है। लता मंगेशकर की आवाज़ में सजा यह गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म साथी का ये गीत। क्या खूबसूरत गीत था। महफिल में किसी के आने की खुशी को जिस नज़ाकत से पिरोया गया है, बरबस मन को छू जाता है। और अब श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत सुनते हैं फिल्म दूर की आवाज़ से। और इस गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर। रात, चांद और खुला आसमान, इन शब्दों में ही रोमांस की पूरी दुनिया बसती है। तो अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी का गाया ये अमर गीत, खोया खोया चांद खुला आसमान, फिल्म काला बाजार से।

और श्रोताओं, आइए सुनते हैं इन सुहानी रातों और चंचल हवाओं के साथ फिल्म दिल्ली के ठग का यह अमर नगमा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में।

और अब श्रोताओं, चलते चलते सुनवा रहे हैं आपको प्रेम की अमरता और समर्पण का प्रतीक ये गीत, उस्तादों के उस्ताद का।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुरों के रंग का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके का लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।